नंदी पे बैठ गए और नंदी पे भी बैठे उल्टा मुंह करके, इधर की तरफ मुंह करके और बरात लेके जा रहे। देवताओं ने सोचा कि अजीब, ये तो शंभू है, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बरात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते हैं। और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बरात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बरात का क्या होगा। भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हुए। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बरात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है, कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के चार चार हाथ हैं, किसी के दस दस पांव हैं, ऐसी अद्भुत बरात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बरात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके, बोले बरात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बरातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता, लगा अरे वाह वाह वाह क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली जब दास इतना सुंदर सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा। तो बोले चिंता मत करो, आ ही रहे, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे ऐसा कामदेव। फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो मैना जी कि दामाद जी आगे दामे, बोले ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा अब तो बस बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख लें, कैसे दामाद जी, नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें। नारद जी ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बरात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बरात हुई चालू, डम डम डम डम करते करते सारे पहुंचे। बोले दामाद जी कहाँ है, बोले दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कही उतरे तो सही, दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या, अब भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं माता जी कौन है। अरे माता जी नहीं, आपकी सासू जी है। बाबा बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है। ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता, आपको इन्हीं से लेना देना, आगे यही अपनी छोरी देंगे, अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी, चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता बाबा जी एक प्रार्थना है कहूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तो महाराज उससे तो कोई लाभ नहीं है।
बाबा भोलेनाथ बोले, वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया, तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहनकर बाबा एकदम तैयार, अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा, दासी को कहा, अरे जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई, जाके देखा, बोला मैया एक ऐसो बाबा जी आयो, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखे होगो मैया तेने ना कभी देखेगी, ऐसो कौन सो बाबा जी आगो। बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई, बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहां ते पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए। अच्छा बाबा जी कहां लोगे, भोजन पाओगे के सोना लोगे के चांदी लोगे, कहां लोगे? बोले अरे मैया तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है। अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? ले मैया मैं तो बड़ी दूर ते तेरे लाला को दर्शन करने आयो, मैं तेरे, हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। मैया ने कही, कहा बाबा आपके कहियो, कहा मांगने आयो तू? बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आयो। मैया बोली, बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो कु दे दो, तू कहेगो मुकु मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली, बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है डर लग रहे हो है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी? इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं कहां पर, तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूर उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो? अरे मैया तू नहीं जाने, तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊं मैया, आगे भविष्य में चल के तो वो 100 पनवारे सांप के ऊपर नाचेगो, सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली, बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है क्या सांपन पे नाचेगो? और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहां तू आयो है, जहां लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गए हो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे, हंसे, बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गए। बाबा बोले, नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो। मैया बोली, या ब्रज में बहुत लाला है, जा काई के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले, ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। मैया बोली, देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटीली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले, तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली, बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले, कब तक नहीं कराएगी? कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे, ते तब देख लूंगो। मैया बोली, मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे, कितने द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले, अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले, नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल वालन को घरन में ही बुला लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी।
बाबा बोले अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी, छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो, तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली छोरा कुआरो रख लूंगी पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले बड़ी हटीली अम्मा आई, हम तो सोचे हम ही है जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तुम्हें, हम भी यहीं बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहां से हटेंगे नहीं। मैया बोली बैठो रे, मैं अपनों काम धंधो संभालू। और मैया भीतर चले। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मन ही मन ठाकुर जी को कहते, अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा, अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते, अब तो चार दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहेगा। बोले क्या? बोले रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जैसे रोने की आवाज आई, वो आवाज बाहर गई। अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आ, अरे मैया कहा कर रही है, तो कु तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली गोपी कहा करूं? बोले रो रहे हो है तो याकू कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लेकर के झन झन झन हिलाई, तब भी चुप नहीं हुए। मैया ने पल्ला में झुलाए, तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे। गोपी बोली मैया मोकू तो लगे तेरे छोरा पे काई गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो होतो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो, मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो काई गोपी ने नजर लगाई। मैया बोली अब कहा करे? बोले कहा करे का नजर उतारो या की। बोले कैसे नजर उतारे? बोले जा रसोई थे वो लेके आ, राई नून लेके आ भीतर। मैया गई, नमक लाई, राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की पलाए की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिसाचनी यहाँ की वहां की इधर की उधर की सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी, अब नजर उतारने के बाद तो कान्हा कम रोने चाहिए, पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे? ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है। बोली मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो, अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहा है। मैया बोली कहा बीमारी है? बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का? बोले मैया मोकू तो समझ आ गई या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई, और मैया अब वह भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी?
बोले मैं थोड़ी उतारूंगी वाकई नहीं, तो कोई बाबा जी कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलानो पड़ेगो, वो भूत उतारे हो। तो गोपी अब कौन को बुला के लाए, मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले मैया टेंशन मतलब मैं हूं ना, अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ धूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी नजदीक गई, बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है, तो जाके पूछी बाबा एक बात बताओ, तुमको भूत उतारने आते हैं? बाबा बोले पहले ये बताओ किसको चढ़े, उस पे डिपेंड करता है। बोले हमारी मैया है ना वह को लाला है, चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारे हुए वारो कोई बाबा चाहिए, तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले हाँ, मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका, तुम भी कर दो। बाबा जी बोले अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते? अरे गोपी मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है? अभी लेके आ एक चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। गोपी राजी हो गई और खुश होती होती मैया ओ मैया बाबा जी मिल गयो, भूत उतार देगो, एक मंत्र पढ़ेगो और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। पर कौन सो बाबा जी? बोले मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यही तेरे आंगन में बैठो। मैया बोले ले कराई काम खराब, मैं कब ते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, और तू वाकु जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है, कैसो रूप है वाको? गोपी बोली मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो, तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो, और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाओ। अब तो कु बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो, बता। भैया बोली मोकू तो लाला प्यारो, तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत दूर जाके ठाड़ी है जाइयो। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया, कहीं छोरा को बड़ी भोली है मैया बड़ी भोली है, ढक करके चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है बढ़ती जा रही है, गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है। वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बाल कृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा, और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। बोली लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जाने को, और नजदीक चली गई बाबा के और पास गई और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है, बाबा ने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे छोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली ऐसे कैसे उतर गए, जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे, तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला, और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिल खिला करके हंस दे। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र पंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला, बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया और राधा बोलते ही श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दी, जोर से हंस दी। भैया बोली हाँ बाबा जी तो बड़ा, देखो अभी तक छोरा रो रहे हो, हंसन लगे।
मैया की इच्छा और बड़ी। अच्छा बाबा एक बात बता, भूत तो पे उतारने आवे पर तो को हाथ देखनो आवे, भविष्य बतानो आवे? मैया ना ऐसी होती है, एक काम में 10 काम करना चाहती है। कोई एक आयोजन हो, एक कार्यक्रम हो, उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले लाला को देखनो। बोले वाके ताई तो लाला को मेरी गोद में देना पड़ेगा। मैया बोली ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले तो ठीक है मत दो, हम चलते हैं। बोले ना ना ना ना बाबा रुक रुक जा रुक जा, तेरी गोद में दे दूंगी पर देख बाबा जरा संभाल के, अपने नागन्ने ने थोड़ा संवार के रख, समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले मैया, अरे यशोदा मैया, तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने। मैया तो को पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो, मैया तो को पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो, मैया बड़ो है के या के सोने के महल होंगे, और तो और मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली बाबा मैंने तो को काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो। अरे राजा बनेगो, नाम रोशन करेगो, बड़ो होगो, महल बनाएगो, तो वो तो या के नहीं होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले मैया तू बता तो को तेरे निया कहा चाहिए? बोले मोको तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगो। बाबा बोले 4 दिन को तेरो छोरा है, अभी यहाँ पे आँख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले ना ना बाबा, अब देखना यू कालो कलूटो सो है तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि या को कोई अपनी छोरी नहीं देगो। तो बाबा अब तू ही बता, अब छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए, बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी, वो को रोज नए नए व्यंजन खवाएगी, और बाबा बताना या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है? अरे मैया या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब? बोले मतलब मैया तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। अब जैसे मैया ने सुनी तो बस वहीं खड़ी की खड़ी। बाबा बोले कहाँ सोच रही है मैया? बोले बाबा न्यो सोच रही हूँ, अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी का हालत होगी। बाबा वहीं बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी, तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी? बाबा ने कहा मैया अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया अब मैं चलू, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान करिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती ना ना बाबा तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा। क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोरा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यही रह जाओ बाबा, और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, 4 स्थान पर 4 रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराज

0: कभी कभी हम हाँ कहना नहीं चाहते, फिर भी सिर्फ डर से मान जाते हैं कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आरजे पलक और शो लेकर आ गई हूँ नया नजरिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हैबिट की जो धीरे धीरे हमारी खुशी छीन लेती है, अप्रूवल ट्रैप। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी एंड बीके प्रिया जी। वेलकम मैम।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग
0: ज्योति जी। अगर कोई सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए हर बात पर हाँ कहने लगे तो क्या यहीं से अप्रूवल की आदत शुरू होती है?
1: कह सकते हैं, अगर हमें वो बार बार इस चीज की आदत होती जा रही है, बार बार किसी से अप्रूवल लेना ही है, तो वो हमारी आदत तो बन ही

0: तो अगर आपको लगता है कि ये टास्क हम बाद में करें या आपका पहले करें, तो आप मुझे वो चीज बताएं, अगर आप रुक सकते हैं तो। इससे क्या है, हमने ना भी नहीं किया और साथ साथ जो है हमने अपनी बात भी रख दी है। तो हाँ जी का भी जो आपका रोल है जो यस करने का, वो भी कहीं हमने खराब नहीं किया है। और दूसरा जो है, कहीं ना कहीं जो हमारी नेगेटिव बातें आती हैं, एकदम से हम किसी को अगर ना करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको बुरा लग जाता है। अगर हम भी किसी से कोई काम कह रहे हैं और उसने तुरंत ना कह दिया, तो हमें लगता है कि इसने तो एकदम से ही ना कह दिया है, तो किसी न किसी को हर्ट होता है और हमें भी कहीं ना कहीं वो बुरा लगता है और हम भी किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमेशा ये नहीं सोचे कि हमेशा सामने वाला मुझे जो कह रहा है हम कर सकते, क्योंकि हर एक की एक अपनी लिमिटेशंस है, हर एक व्यक्ति की अपने अपने काम करने की क्षमता है। और अगर हम उससे बियॉन्ड जा करके सिर्फ लोगों को राजी करने के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सामने वाले को हम ना चाहते भी फिर हर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी तो उतनी है, और वो हर्ट होगा तो हम भी कहीं ना कहीं हर्ट होंगे। तो इसीलिए आपका जो भी शेड्यूल है, आप उसको हाजी करके अपने शेड्यूल को जरूर बताएं कि हाँ ये मेरा शेड्यूल है, अगर आप आगे पीछे कर सकते हैं तो आपके काम के लिए हम नो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले से जो चीज फिक्स है। तो आप देखेंगे कि सामने वाला कभी भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि हम रोज की लाइफ में ऐसा करते हैं कि अगर हमने रिक्वेस्ट की है कि हाँ ओके हम करेंगे, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पहले से ये काम है तो आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उससे उनको भी लगता है कि हाँ इनके पास जेन्युइनली काम है और ये करना तो चाहते हैं लेकिन ये खुद भी बिजी है। तो इसीलिए वो फिर हमारी आदत भी नहीं बनेगी, जो अप्रूवल वाली आदत बनती जा रही है हमारी, वो आदत भी कम हो जाएगी और साथ साथ हमें ना कहने की आदत भी नहीं बनेगी। यस हम करेंगे लेकिन बैलेंस रख।
1: जी बिल्कुल, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: Luxury is not about what you wear, it's about how you carry yourself. Ilahe by Ritu invites you to Jashn, a premium fashion and lifestyle exhibition where elegance meets creativity and style meets sophistication.
1: यहाँ आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिजाइनर एंसेम्बल, स्टेटमेंट ज्वेलरी, लग्जूरियस एक्सेसरीज और हैंड पिक लाइफस्टाइल ब्रांड्स, ऑल क्यूरेटेड फॉर दोज हु अप्रिशिएट द फाइनर थिंग्स इन लाइफ. सो मार्क योर कैलेंडर्स, 6th August, 11 AM टू 8 PM, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद.
0: कम एक्सप्लोर अ वर्ल्ड ऑफ फैशन, एलिगेंस एंड लग्जरी.
1: जश्न इलाहे बाय रितु. सी यू देयर.

0: कई लोग अपनी खुशी से पहले हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते रहते हैं और धीरे धीरे खुद को ही भूल जाते हैं। प्रिया जी, क्या हर किसी को खुश रखने की कोशिश हमें धीरे धीरे खुद से दूर कर देती है?
1: बिल्कुल, क्योंकि जब मैं किसी को खुश नहीं कर पाती हूँ, मैंने कोशिश की पर वो नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस दुनिया में हर किसी को खुश कर ही नहीं सकती। अब हर किसी को खुश करने की बात नहीं आती, लेकिन जो मेरे सर्कल में है उनको भी मैं सभी को खुश पूरी तरह से 100% नहीं कर सकती। और जब मैं नहीं करती तब मैं और स्ट्रेस में जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मुझे सबको खुश करना है, तो यहाँ मेरी एक्सपेक्टेशंस को भी चोट लगा और दूसरा मैंने उसे खुश नहीं किया है तो वो भी मेरे से अपसेट है, तो यहाँ मुझे डबल चोट लग रही है। और जब डबल चोट आ रही है तो फिर मैं उसको हीलिंग नहीं करूँगी तो अपने आप से मैं वाकई में दूर जा रही हूँ, क्योंकि अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने जो भी मेरा मेंटल लेवल है, मैं उस चीज़ के बारे में डीपली सोच ही नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले अपने आप को हमें देखना है कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। मैंने अपनी कोशिश की लेकिन सामने वाले की उम्मीदें बहुत ही ज्यादा हैं और वहां मेरा लेवल ही नहीं है। अब वो व्यक्ति जो सामने है वो सीधा एरोप्लेन में बैठना चाहता है पर मैं ट्रेन की ही टिकट प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मुझे अपने आप को बैक करने की जरूरत है और अगर मैं नहीं करती हूँ तो अपने को चोट दे रही हूँ और अपने आप को चोट देना माना मैं अपने आप से दूर हो रही हूँ, क्योंकि जो अपने आप को चोट दे रहा है वो अपने आप से दूर है। और जो अपने आप को पहचानता है उसे पता है मेरी लेवल क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मेरी चॉइसेस क्या है, मैं किस चीज में खुश हूं, तो वो अपने आप को हील करेगा। और दूसरा एक और बड़ी बात है कि अगर मैं खुश हूं तो ही दूसरे को खुश कर पाऊंगा। अगर मैं चोट में हूँ, उदास हूँ, परेशान हूँ, बिगड़ी हालत में हूँ इंटरनली, तो मैं सामने वाले को ज़्यादा देर खुश कर ही नहीं सकती, सबको खुश कर ही नहीं सकती। इसलिए नीड है सबसे पहले अपने आप को हील करना, खुश करना, अपने आप को पहचानना।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे

0: अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ, तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: हो गया।

0: तो अच्छा होगा ना।
1: खाना छड़ पीने की सोच, बियर शर सब बंद पहन।
2: तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई याद अब फैल रही है यार। पुलिस, पुलिस, दिस इज अनरियल मैन। ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार।
3: 89.6 रेडियो महारानी पर 1947 वापस आ रहा है। कब, कहां, कैसे, जल्द पता लगेगा।

0: कभी सिर्फ एक नो बोलने पर भी गिल्ट फील होने लगता है, जैसे हमने कुछ गलत कर दिया हो। ज्योति जी, अगर नो बोलते ही गिल्ट फील हो तो उससे बाहर कैसे निकला जाए?
1: डिपेंड करता है कि आपको गिल्ट किस ना कहने पे हो रहा है। ये भी बहुत जरूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा मूड डिस्टर्ब था और हमने उस डिस्टर्ब मूड में ही किसी ऐसे कार्य के लिए ना कह दिया और फिर हमें गिल्ट फील हो रहा है। तो उसके लिए तो सबसे जरूरी है कि हम उस बात को जाकर क्लियर कर लें और अपने मन की गिल्ट जो है उसको ख़त्म कर लें। जिस व्यक्ति को हमने ना कहा है उसको अपने मन की सिचुएशन को समझा दें तो वो गिल्ट ख़त्म हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने ना कहा है लेकिन वो जेन्युइन ही कारण था, लेकिन फिर भी हमें गिल्ट फील हो रहा है कि हाँ हमने ना क्यों कहा है। तो उसमें हमें अपने आप को एक थॉट देना है कि हमने किसी को दुख ना मिले इसलिए ना कहा है। तो मुझे इसमें, अगर आप गिल्ट में रहेंगे तो आप ना तो अपना वो कार्य कर पाएंगे ना दूसरे को दोबारा वो खुशी दे पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को ये थॉट देना है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, जो भी है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी थी। तो जितना हम अपने आप को इस चीज का, ये क्योंकि इन सब के लिए, जो भी आपने गिल्ट की बात की या जो भी हमने ये दो जो बातें बताई भी हैं कि गिल्ट को कैसे हम ठीक करें, इनमें सबसे जरूरी चीज है कि आपको पहले अपने साथ टाइम देना पड़ेगा। अगर आप अपने साथ टाइम देते हैं कि मुझे इस गिल्ट को खत्म करना है, तो वहीं से ही आपकी वो शुरुआत हील होने की शुरू हो जाती है।

0: सबसे जरूरी है कि हम गिल्ट भी फील कर रहे हैं लेकिन हम अपने को टाइम भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर ऐसे ऑप्शन में तो हम ठीक अपने आप को नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे अपने आप को ठीक करना है तो मुझे अपने आप को थोड़ा टाइम देना है कि मैंने क्यों ना की है, उसके पीछे रीजन क्या था, क्या सामने वाले को दिल दुखाना। अगर शायद नहीं, शायद मैं तो नहीं समझती कोई भी दिल दुखाने के लिए ना कहेगा, कोई रीजन था इसलिए ही ना किया, तो फिर मुझे गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। और अगर मैंने कोई अपने मूड ऑफ के कारण किसी को ना कहा है तो उसके लिए फिर मूड ऑफ करके बैठने से और गिल्ट करने से नहीं होगा, उसको जाके क्लियरिफिकेशन करना है। तो ये चीजें पहले अपने आप को टाइम दें, उस रीजन को ढूंढे कि मुझे गिल्ट क्यों हो रहा है और मैंने ना क्यों कही है, तो हमें उसका सोल्यूशन मिल जाएगा।
1: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

हेलो एंटरटेनमेंट के पागल लोग, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, जहां हम स्क्रीन के इस पार की दुनिया को थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा फनी और फुल मसालेदार अंदाज में डिकोड करते हैं। तो भाई, जिस शो ने जेल के अंदर से इतना ड्रामा बाहर भेजा कि घर बैठे लोगों को भी लगा भाई हमारी लाइफ तो काफी पीसफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉकअप की। तो अब लॉकअप पहुंच चुका है अपने ग्रैंड फिनाले के दरवाजे तक, और जैसे जैसे ट्रॉफी करीब आ रही है, कंटेस्टेंट के असली गेम प्लान भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी शो का रूल सिंपल है। शुरुआत में सब बोलते हैं मैं ना यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ, और फाइनली आते आते वही दोस्ती बदल जाती है, सॉरी ब्रो, ट्रॉफी के बीच में फ्रेंडशिप नहीं आती। इस शो में फाइट्स भी मिले, इमोशंस भी मिले, सीक्रेट्स भी मिले, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहाँ ऑडियंस ने रिमोट नहीं बल्कि अपना पेशेंस पकड़ रखा था। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन बनेगा लॉकअप का अल्टीमेट विनर? किसके फैंस करेंगे सबसे ज्यादा नॉइस? किसका गेम पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्ग? और कौन निकलेगा असली जेल का बाजीगर? क्योंकि रियलिटी शो में आखिरी वीक में ना भाई कंटेस्टेंट नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजी का मेकओवर होता है। तो अगर आप भी पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस फाइनल धमाके का, तो बने रहिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ। मैं हूँ गीत और चल रहा है सिनेमा का कैप्सूल।

0: भेजे पलक।
1: खुद का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन कई लोग इसे सेल्फिशनेस समझ लेते हैं। प्रिया जी, खुद को प्रायोरिटी देना और सेल्फिश होना, इन दोनों में फर्क कैसे समझे?
2: ये सिंपल सा साफ वो डिफरेंस है जिसमें ईगो वर्सेस सेल्फ एस्टीम।
1: जी,
2: अगर सेल्फ एस्टीम है तो मैं प्रायोरिटी दूंगी, और अगर ईगो है तो मैं सेल्फिश हो जाऊंगी। तो अगर मुझे इस चीज को क्लियर करना आता है कि कहाँ पे मेरा सेल्फ एस्टीम नहीं टूटना चाहिए, तो वहां मैं अपने आप को प्रायोरिटी दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अपनी प्रायोरिटी देनी है कि अपना जो रिस्पेक्ट है वो मुझे मेंटेन रखनी है, सामने वाले के नीचे मुझे इतना नहीं दबना कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी इमेज मेरी ही आंखों में गड़बड़ होने लगे या मुझे मेरे ऊपर शर्म आने लगे। मुझे कुछ ऐसा नहीं करना जो मुझे गिल्ट फील होने लगे। तो यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, यानी प्रायोरिटी की बात आती है। और जहाँ मुझे लगता है कि सिर्फ मैं अपने आप को ही हाईलाइट करने पे लगी हूँ, अगर फोटो भी खिंच रही है तो मैं फ्रंट में खड़े होना चाहती हूँ, चाहे मेरी हाइट सबसे बड़ी है, क्योंकि हाइट बड़ों को तो पीछे होना चाहिए और हाइट कम को आगे। तो जिस भी लेवल पे अगर मैं बस सबको पीछे करके आगे आ रही हूँ, किसी भी वे में, अगर किसी के लाइक ज्यादा आ गए हैं तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया है कि मेरे पे लाइक ज्यादा आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं अगर कहें कि मैं अपने आप को ईगोइस्टिक लेवल पर लेकर जा रही हूँ, वहां मैं सेल्फ वर्थ नहीं देख रही हूँ, यहाँ मैं अपना सेल्फिशनेस मेरी आ रही है। कुछ भी आया है वो मुझे पहले मिले, मैं भले नहीं आई हूं तो क्या छोटों को पहले नहीं मिल सकता? किसी भी वे में आगे आ जाना, तो मुझे ये देखना है आगे तो रहना है, लेकिन इस वे में रहना है जो मैं सबको प्यार से आगे ले चलूं, सबको साथ आगे ले चलूं, साथ में आगे चलना, वो विन विन सिचुएशन है कि आप भी जीते और मैं भी जीती। लेकिन जहां मैं सिर्फ अपने को आगे रखूंगी तो एक दिन सब मुझे पीछे रख देंगे, तो वो लॉस लॉस सिचुएशन हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को हमेशा क्लैरिटी में रखें कि कहां मेरी सेल्फ एस्टीम और ईगो ये क्लैश ना कर जाए।
1: इतनी मीनिंगफुल बातें शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच मैम।
2: ओम शांति। थैंक यू।
1: दोस्तों, याद रखिए, हर किसी को खुश रखना अपनी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन खुद को खुश रखना जरूर आपकी जिम्मेदारी है। जब आप खुद इमोशनली स्ट्रांग होंगे तभी दूसरों का भी बेहतर साथ दे पाएंगे। मैं हूँ आज पलक, आपसे इजाजत लेती हूँ। फिर मिलेंगे नए नजरिया के अगले एपिसोड में, एक नए टॉपिक और एक नए नजरिए के साथ। बाय बाय, टेक केयर।

करा गए क्योंकि ना एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है आज के दिन, क्योंकि आज फ्राइडे में ना सारा काम कंप्लीट करके सैटरडे संडे चिल करने वाले हैं, अपने आप को रिस्टार्ट करने वाले हैं और फिर से रीसेट करके ना फिर से आएंगे मंडे, बैक टू पवेलियन होने वाला है। लेकिन उससे पहले आज का दिन है तो आज की मॉर्निंग को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बहुत सारी बातें आपके साथ करने वाली हूँ और आज ना आपको एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: हेलो जी। तो भाई बारिश की अगर मैं बात करूँ ना, तो इन दिनों बारिश जब चाहे तब हो रही है, सुबह हो रही है, शाम को ऑफिस से घर जाते वक्त हो रही है, ऑफिस आते वक्त हो रही है, और पूरा दिन बारिश होती नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि बारिश के साथ ये टाइमिंग किसने फिक्स की है। अगर परसों की बात बताऊं तो इतनी ज्यादा बारिश थी, मुझे ऑफिस में रुकना पड़ा था इस बारिश की वजह से। और आपको फरीदाबाद की सड़कों के हाल तो पता ही है ना कि थोड़ी सी बारिश होती है और फ्री का स्विमिंग पूल हमें मिल जाता है। खैर देखिए भाई, बारिश तो आज भी है, इस बारे में बात कर ही लेते हैं। तो अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो 27 डिग्री है, मिनिमम की बात की जाए तो 23 डिग्री है, और आज भी थंडरस्टॉर्म की हमें वार्निंग मिली हुई है। तो भाई आज सुबह से आपने देख ही लिया होगा बारिश के क्या हाल होने वाला है, और 12 बजे तक बारिश की प्रिडिक्शन है बहुत ही अच्छे तरीके से। 40-70% आज आपको बारिश मिलेगी और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो इस मौसम में अपना ख्याल जरूर रखिएगा। और एक और चीज, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ अम्ब्रेला रेनकोट जरूर लेकर जाइएगा, अगर भीग गए इस मौसम में तो कोल्ड हो जाएगा। और यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल जरूर रखिए क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत है, और इस खूबसूरत मौसम को ना हेल्दी रहकर एंजॉय करने में मजा आता है, ना कि तबीयत खराब करके। तो एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: ये पूजा पाठ रोजे उपास आता नहीं है मुझको,

मेरा नाम डॉक्टर रवि शेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश और बदलते हुए मौसम में सांस के मरीजों के लिए काफी तकलीफें आ सकती हैं। खास तौर पे ध्यान रखने की बात होती है कि जैसे ही बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में नमी बढ़ती है, तो वायरल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। साथ ही में बारिश के मौसम में हम गर्मी से सर्दी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो

0: इस चेंजिंग वेदर में सांस के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है, खासतौर पर जिनको अस्थमा या सीओपीडी नाम की बीमारी है, उनकी सडनली वर्सनिंग होने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको इनहेलर या नेबुलाइजर चलते हैं तो उसको इस मौसम में बिल्कुल भी बंद ना करें। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: The last ride. King.

तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जिंदगी में ना हर दिन एक नई तारीख के साथ आता है और इसी तारीख पे आज बात करने वाले हैं। हाँ जी, तो आज 7 अगस्त है और आज के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल ट्विंस डे। बहुत ही कमाल का दिन है और जहाँ पर ट्विंस की होती है ना, वहाँ अक्सर लोग बोल ही पड़ते हैं, अरे भाई ये कौन सा वाला था, बिकॉज समझ ही नहीं आता कि कौन बच्चा बड़ा है और कौन बच्चा छोटा है, कौन बहन बड़ी है और कौन सी बहन छोटी है। और पता है, अगर ट्विंस की बात करें ना, तो ट्विंस के बीच ना बॉन्डिंग बड़ी कमाल की होती है। कहते हैं इन्हें ट्विंस, यानी कि दो लोग, लेकिन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन ना मेरा सवाल है आपसे कि आपके घर में या फिर आपके किसी रिलेटिव में कोई ट्विंस है, अगर है तो क्या कभी फनी इंसिडेंट हुआ है? और अगर हुआ है ना तो मुझे जरूर बताएगा। और आपको बताया ना, बताने के लिए कहाँ जाना है, बताने के लिए जाना है आपको रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर। तो फटाफट से जाइए, अपना वॉइस मैसेज हमें भेजिए और अपना फनी इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कीजिए। और चलिए साथ ही स्पेशल डे को सेलिब्रेट करते हैं विद दिस सॉन्ग, और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हेलो एंटरटेनमेंट के पागल लोग, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, जहां हम स्क्रीन के इस पार की दुनिया को थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा फनी और फुल मसालेदार अंदाज में डिकोड करते हैं। तो भाई, जिस शो ने जेल के अंदर से इतना ड्रामा बाहर भेजा कि घर बैठे लोगों को भी लगा भाई हमारी लाइफ तो काफी पीसफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉकअप की। तो अब लॉकअप पहुंच चुका है अपने ग्रैंड फिनाले के दरवाजे तक, और जैसे जैसे ट्रॉफी करीब आ रही है, कंटेस्टेंट के असली गेम प्लान्स भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी शो का रूल सिंपल है। शुरुआत में सब बोलते हैं मैं ना यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ, और फाइनली आते आते वही दोस्ती बदल जाती है सॉरी ब्रो, ट्रॉफी के बीच में फ्रेंडशिप नहीं आती। इस शो में फाइट्स भी मिले, इमोशंस भी मिले, सीक्रेट्स भी मिले, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहाँ ऑडियंस ने रिमोट नहीं बल्कि अपना पेशेंस पकड़ रखा था। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन बनेगा लॉकअप का अल्टीमेट विनर? किसके फैंस करेंगे सबसे ज्यादा नॉइस? किसका गेम पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्ग? और कौन निकलेगा असली जेल का बाजीगर? क्योंकि रियलिटी शो में आखिरी वीक में ना भाई कंटेस्टेंट नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजी का मेकओवर होता है। तो अगर आप भी पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस फाइनल धमाके का, तो

बातें बहुत सारी कर लिए, लेकिन अब टाइम हो गया बॉलीवुड बस का। हेलो हेलो जी, तो फिर से आ गई हूँ मैं करने बातें बहुत सारी, लेकिन ना सबसे पहले टाइम हो गया बॉलीवुड बस का। तो आज देखते हैं बॉलीवुड में क्या कुछ खास है, क्या नई चीज मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अगर मैं बात करूँ ना इमरान हाशमी की फिल्म आवारा 2 का, तो ये बहुत ज्यादा इंतजार था लोगों को। और जब से पता चला है इमरान हाशमी की ये फिल्म आ रही है, उनके फैंस पागल हो गए हैं। लेकिन उनके इस एक्साइटमेंट को थोड़ा सा खराब कर दिया सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया पर ना इन दोनों एक अफवाह उड़ाई गई थी कि ये जो फिल्म है वो पोस्टपोन हो गई है। लेकिन जब इमरान हाशमी तक ये बात पहुंची ना, तो वो खुद आए अपने इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम लाइव पर उन्होंने साफ कर दिया है कि फिल्म पोस्टपोन नहीं हुई है। और इमरान ने तंज भी कसा है कि कहा है ये जो लोग आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल देते हैं ना, प्लीज ऐसा ना करे, बिकॉज अभी मूवी तो आकर रहेगी और मूवी आ रही है 14 अगस्त को। तो ये ट्रेलर भी जल्द आने वाला है, इस ट्रेलर को भी जरूर देखेगा। और अगर आप भी शिवम की वापसी का वेट कर रहे हैं ना, तो काउंटडाउन शुरू कर दीजिए। फिलहाल लेते हैं छोटा सा म्यूजिक ब्रेक। तो आज की अपडेट थी खास आपके लिए, और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

फरीदाबाद की तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, यानी कि देश विदेश में और हो क्या रहा है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे इवेंट के बारे में जिसे सुनने के बाद ना आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। गार्डन गार्डन हो गया। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि एक ऐसा इवेंट बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद ना आपका मन खुश हो जाएगा। को अमेरिका के कैलिफोर्निया में वर्ल्ड डॉग सर्फिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई है, जहाँ पर बहुत सारे डॉग्स ने समुद्र की लहरों पर सर्फ बोट चलाकर सबका दिल जीत लिया। और जब ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी ना, तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्राइटेरिया रखा था। क्राइटेरिया ये था कि इन डॉग्स को इस बेसिस पर जज किया जाएगा कि वो कितनी देर तक इन सर्फ बोट पर अपना बैलेंस बनाकर रख पाते हैं, लहरों के साथ कितना कॉन्फिडेंस तक राइड कर पाते हैं, और साथ ही इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस कैसी होती है। तो भाई बहुत ही शानदार जो है यहाँ पर इन्होंने परफॉर्म किया है। अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर छोटे बड़े मोटे हर तरह के डॉग्स ने पार्टिसिपेट किया था। और अगर मैं इस चैंपियनशिप की बात करूँ ना, तो यहाँ हमें ये जरूर बताता है कि टैलेंट सिर्फ हम इंसानों में नहीं होता। तो देखा भाई, हो गया ना दिल गार्डन गार्डन जब ये इवेंट के बारे में सुना। आई एम अ पैट पगलू, और जब मैं ऐसी चीजें सुनती हूँ ना तो मेरा दिन बन जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपका दिन बनाया जाए। इसी के साथ एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

किसी को किसी की सैलरी पर जज करने वाली हूँ, लेकिन हाँ हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि जितनी हमारी सैलरी है ना उससे ज्यादा जरूरी है उसकी सेविंग। यानी कि आज की बिजनेस मंत्रा में आपको ये बताने वाली हूँ कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर महीने अपने इनकम का अगर आप 20% सेव या फिर कहीं इन्वेस्ट करने की आदत बनाते हो ना तो फ्यूचर में ज्यादा सिक्योर बन सकते हो। बिकॉज अगर देखा जाए ना तो छोटी छोटी सेविंग ही है जो आगे चलकर हमारे बड़े गोल्स को पूरा करती है। तो चाहे घर खरीदना हो, ट्रैवल प्लान करना हो या फिर कोई इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना हो। तो देखा आज का बिजनेस प्लान बहुत ही सिंपल सा है, अगर कोई भी बिजनेस भी करना है ना तो पहले सेविंग जरूर करनी पड़ेगी। तो ये था आज का मंत्र कि अपनी सैलरी में से 20% सेव करना स्टार्ट कर दीजिए और फिर एक दिन जब वो पैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना तब कहीं उसे इन्वेस्ट कर दीजिएगा और साथ ही कोई बिजनेस कर सकते हैं आप। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स मैं लेकर आती रहूंगी, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलता है रेडियो महारानी पर।

0: एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: पारो, मेरी पारो।

जिंदगी में अगर ड्रामे ना हो ना तो जिंदगी बड़ी बोरिंग सी है, और खासकर वीकेंड वाले टाइम पर। देखिए अंजलि आए ऑन एयर और गॉसिप ना लाए, ये कैसे हो सकता है। तो भाई आज मैं एक अजीबो गरीब सोशल स्यापा की बात करने वाली हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो भाई आज का स्यापा आ गया आगरा से। यहाँ पर एक चोर चोरी करने के लिए आया, पहले घर में घुसने के लिए ना ताला तोड़ा, लाखों के कैश और गहने उठा लिए, मोबाइल तक चुरा लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस चोर ने जाते जाते सोचा क्यों ना फ्रिज से कुछ खा लिया जाए, और जब उसने फ्रिज में रबड़ी रखी हुई देखी ना, इस चोर का दिल पिघल गया। कहाँ, रबड़ी पर। तो फिर क्या था, महाशय बैठ गए एक जगह और आराम से बैठ कर ना रबड़ी खाने लगे। लेकिन यहाँ ना किस्मत से इनका कनेक्शन टूट गया, लगता है ये भी गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है। लेकिन जैसे बाहर के लोगों को पता चला ना इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, फिर क्या था, लोग इस घर के अंदर चले गए और जाकर इस चोर को पकड़ लिया। कहाँ ना किस्मत से कनेक्शन टूट गया।

वेलकम बैक गाइज, यू आर लिसनिंग टू फेवरेट सेगमेंट सिनेमा कैप्सूल। मैं हूँ आरजे गीत और यहाँ मैं रिव्यूज नहीं देती बल्कि बताती हूँ कि वीकेंड का डेटा पैक इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मुसाफिर कैफे की, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है इन दिनों। अब ऑनेस्टली ओटीटी पर इतना अच्छा कॉन्टेंट आ रहा है, रिमोट से ज्यादा तो थम वर्कआउट कर लेता है, हाफ एन आवर सिर्फ स्क्रॉल करने में निकल जाता है और एंड में वही पुराना सिटकॉम ऑन। लेकिन मुसाफिर कैफे इज अ लिटिल डिफरेंट। सबसे पहले विक्रांत मेसी, ये बंदा भाई एक्टिंग नहीं करता, बस स्क्रीन पर आ जाता है और बाकी के इमोशंस ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। इसको ओवर एक्टिंग का पासवर्ड शायद आज तक मिला ही नहीं। और अच्छी बात ये है कि ये सीरीज अननेसेसरीली लाउड बनने की कोशिश नहीं करती, ना फोर्स्ड एक्शन, ना रैंडम ट्विस्ट, ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर सीन में चलता रहता है, बल्कि एवरीथिंग फील सिंपल ऑर्गेनिक। वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी काफी नेचुरल लग रही है, तीनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर बिल्कुल एफर्टलेस फील होती है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो स्लो कन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं, जो कॉफी पे दो घंटे बैठ सकते हैं और जिन्हें हर 10 मिनट में एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हर एपिसोड के बाद बोलते हो बस ट्विस्ट कहाँ है यार, तो मे बी दिस वंस नॉट योर कप ऑफ कॉफी। लेकिन अगर मूड है समथिंग काम, फील गुड और जेन्युइनली वेल परफॉर्म देखने का, देन मुसाफिर कैफे डेफिनेटली डिजर्व अ चांस। मैं हूँ गीत और मिलते हैं नेक्स्ट सिनेमा कैप्सूल में, क्योंकि ओटीटी पर कंटेंट खत्म हो सकता है लेकिन भाई मेरी बातचीत खत्म नहीं होगी। तो वक्त है गाने का, गाना सुनकर आते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

अगर ऑफिस के लिए निकल ही गए हो तो अब ये सुनते जाओ। तो आज की अपडेट खास आपके लिए, और अपडेट ये है कि फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ अगर जाने वाले हो ना, तो जितने भी कम्यूटर्स आज मुझे सुन रहे हैं वहाँ पर जाने वाले, तो आज आपको बदरपुर बॉर्डर, NHPC चौक और मथुरा रोड पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। बिकॉज आप सभी को पता है कि भाई ऑफिस वाला टाइम है, पीक आर है, और ऐसे में ना ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो हो ही जाता है। और इसके साथ ही खास चीज का ध्यान ये रखना है कि अगर सरिता विहार के फ्लाईओवर से जा रहे हो ना, तो वहाँ पर ना रिपेयरिंग का कुछ काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको आज ट्रैफिक मिलेगा। और तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाइएगा, और अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो रूट को जरूर डाइवर्ट कर लीजिए। और बस साथ ही ये कहना चाहते हो कि ट्रैवल को एंजॉय कीजिएगा, ज्यादा गुस्सा मत कीजिएगा, बिकॉज गुस्सा करने से ना बीपी हाई हो जाता है, और आपको पता ही है कि का गुस्सा ट्रैफिक को नहीं हटा सकता है। तो ऐसे में एंजॉय कीजिए अंजलि ऑन एयर, और एंजॉय कीजिए इस प्यारे ट्रैक। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: लगता है आजकल ना बहुत सारे साइबर पगलू आ गए मार्केट में, तो चलिए फिर बनाते हैं आपको साइबर स्मार्ट। अब साइबर स्मार्ट बनना ही है तो ऑनलाइन स्मार्ट तो होना ही पड़ेगा ना, और ऑनलाइन स्मार्ट होने के लिए ना आपको कुछ चीजें जरूर करनी है। अगर आपके फोन पर कभी कोई मैसेज या फिर व्हाट्सएप लिंक है जिसमें लिखा हो केवाईसी अपडेट करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है या फिर बैंक अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक, तो बिना वेरीफाई किए उस लिंक पर कभी क्लिक मत कीजिएगा। बिकॉज ये जो साइबर ठग है ना, ये हमेशा इसी तरह के फेक मैसेजेस भेजते हैं हमें, जिस वजह से ये हमारी पर्सनल डिटेल्स ले लेते हैं और हमारा बैंक अकाउंट हो जाता है खाली। तो याद रखिए, OTP, UPI पिन और बैंक पासवर्ड किसी के साथ भी कभी भी शेयर मत कीजिए। अगर कोई फ्रॉड कॉल या फिर कोई मैसेज मिले तो तुरंत उसकी कंप्लेंट करनी है, और कंप्लेंट करने के लिए कहाँ जाना है, कंप्लेंट करने के लिए आपको जाना है 1930, ये साइबर हेल्पलाइन है। इसी के साथ ही नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर भी आप जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। अब देखिए, हम सबके पास स्मार्टफोन्स तो हैं, लेकिन जब बात आती है ना स्मार्ट डिसीजंस लेने की, वहाँ कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी ढील छोड़ देते हैं। तो करना क्या है, बनना है साइबर स्मार्ट, और साथ ही खुद को करना है सेफ फ्रॉम दीज साइबर पगलूज। और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महानाड़ी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

बार ना कई चीजों को सुनकर देखकर ऐसे लगता है कि ये तो कभी नहीं पता था ये कैसे हुआ। तो बस ऐसे ही बातें करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ और टाइम हो गया इंटरेस्टिंग फैक्ट का। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आज मेरे पिटारे में आखिर ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कई बार ना हमें ऐसी चीजें पता चलती है जिन्हें सुनने के बाद ना सीधा ये निकलता है सही में ऐसा भी हो सकता है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपको पता है ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। अब आपको आपके एक्स की याद आ गई होगी क्योंकि वो आपका जो 1 दिल था वो भी तोड़कर चली गई ना। कोई बात नहीं, आज अपना दिल साइड रखकर ऑक्टोपस के 3 दिल की बात सुन लेते हैं। अगर मैं 3 दिल की बात करूँ तो 3 दिल का काम है, 2 दिल ऑक्टोपस के गिल्स तक खून पहुंचाते हैं और जो 3रा दिल है वो पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। तो ये जो 3 दिल है ना वो अपना काम बराबर करता है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब ऑक्टोपस तैरता है ना तो उसका जो मेन दिल होता है वो कुछ देर के लिए धड़कना बंद कर देता है और यही रीजन है कि ऑक्टोपस बहुत देर तक तैरना पसंद नहीं करता। नेचर के पास वाकई कमाल का सरप्राइज है और कई बार लगता है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट भी करती है। तो जरूर कहते हैं, अब आप ये सोचो अगर ऑक्टोपस की गर्लफ्रेंड उसका दिल तोड़ भी देना तो फिर भी उसके पास 2 दिल है तो वो 2 दिल से काम चला लेगा, लेकिन आपके पास 1 ही दिल है तो अपने दिल का ख्याल जरूर रखेगा। और पता है ना हार्ट हेल्थ का ख्याल कैसे रखता है। तो बस हो जाइए शुरू और साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक मिलता है।

मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कॉलिंग।

89.6 रेडियो महारानी पर 1947 वापस आ रहा है। कब, कहां, कैसे, जल्द पता लगेगा।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर किसी ट्रेलर ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज क्रिएट किया है तो वो है रामायण। 30 जुलाई को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड बिलीव मी इंटरनेट लिटरली पॉज हो गया था। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने स्केल के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सबसे पहली बात कर लेते हैं विजुअल्स की। VFX इतने ग्रैंड और पॉलिश्ड लग रहे हैं कि काफी लोग बोल रहे हैं फाइनली माइथोलॉजी इज गेटिंग द सिनेमैटिक ट्रीटमेंट इट डिजर्व्स। और हाँ, सबसे ज्यादा सरप्राइज दिया है रणबीर कपूर ने। ट्रेलर आने से पहले बहुत सारे लोगों का एक ही कंसर्न था एनिमल के बाद क्या वो श्रीराम के रोल में एक्सेप्ट हो पाएंगे, लेकिन ट्रेलर के बाद काफी हद तक वो डाउट खत्म होता दिख रहा है। उनका काम, स्क्रीन प्रेजेंस और सटल एक्सप्रेशंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं साई पल्लवी। एस सीता बिल्कुल ग्रेसफुल, एलिगेंट और एफर्टलेस लग रही हैं। और अब बात आती है उस एंट्री की जिसका सबको था इंतजार, यश एस रावण। पावरफुल लुक, रॉयल ऑरा और सिर्फ कुछ ही सेकंड की प्रेजेंस में उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है। काफी लोग तो कह रहे हैं कि रावण का कैरेक्टर ऑलरेडी घूस पम्प दे रहा है। और हाँ, एक बात फैंस ने जरूर नोटिस की है, ट्रेलर में हनुमान जी का प्रॉपर ग्लिम्प्स दिखा ही नहीं और बस इसी वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई है। शायद मेकर्स ने वो बिगेस्ट मोमेंट फिल्म के लिए सेव कर रखे हो। ओवरऑल ट्रेलर को ऑडियंस ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है और बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है दिवाली 2026 का। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।

0: सचिन, ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा, रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

तो चलिए फिर अब वक्त हो गया है दिमाग की बत्ती जलाने का। जैसे कि पहले ही कहा था कि वक्त हो गया है दिमाग की बत्ती जलाने का, तो बात कर लेते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की, जो है फरीदाबाद की पहेली। तो आज मैं एक पहेली लेकर आ गई हूँ। मैं फरीदाबाद की एक ऐसी जगह हूँ जहाँ सुबह सुबह लोग वॉक करने आते हैं, शाम को फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं और वीकेंड्स पर मेरी खूबसूरती देखने वालों की भीड़ लग जाती है। कभी मुझे फरीदाबाद की शान कहा जाता है और जैसे ही लोग मुझे देखते हैं तो नेचर के करीब पहुंच जाते हैं। अब फटाफट से बताइए मैं कौन हूँ। और बताने के लिए आपको पता है ना कहाँ जाना है? जाना है आपको रेडियो रानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना जवाब बताइएगा और देखते हैं कौन फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानता है। और तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक तहस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: कुछ हटके।
1: सरहद पर खड़े उन हीरोज के लिए क्या आपके दिल में भी कोई पैगाम है? क्या है ये पहल? जल्द ही पता लगेगा 89.6 रेडियो महारानी पर।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

बहुत सारी मैं बातें यहाँ पर लेकर आती हूँ, लेकिन जब मैं खुशखबरी लेकर आती हूँ तो मुझे खुद को अच्छा लगता है। वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजलि और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम पर अंजलि ऑन एयर। तो भाई फरीदाबाद वालों, आपके लिए ना एक बहुत पॉजिटिव अपडेट मैं लेकर आई हूँ, लेकिन अभी इस प्लान में थोड़ा सा वक्त लगेगा और ये प्लान अगर अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चला ना तो फ्यूचर में दिल्ली टू फरीदाबाद के बीच का जो सफर है वो और भी ज्यादा फास्ट और कन्वीनियंट हो सकता है। तो भाई नमो भारत को लेकर बहुत सारी तैयारियां चल रही है एंड ऑफिशियल रूट्स और स्टेशन लोकेशंस पर काम भी किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से फरीदाबाद के कई सेक्टरों को बेटर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है, यानी कि जितने भी डेली कम्यूटर्स का ट्रेवल टाइम है वो अब कम हो सकता है, खासकर जो लोग डेली फरीदाबाद टू दिल्ली जाते हैं। अब सोचिए अगर आप दिल्ली जा रहे हो ना और मेट्रो से जा रहे हो तो आपको पूरा घूमकर

जाना पड़ता है, आपको 2.5 घंटे 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। और वहीं सेम अगर आपको गुरुग्राम नोएडा जाने वाला हो ना, तो लिटरली इतना टाइम लगता है कि इतनी देर में आप ऋषिकेश पहुंच जाए, 6 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी आने जाने में। तो अगर ये कनेक्टिविटी आ गई तो देखिए कितना फास्ट आपका काम हो जाना है, कितना कन्वीनियंट हो जानी है सारी चीजें। तो भाई स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ सफर नहीं बल्कि हमारे ट्रैफिक और पॉल्यूशन दोनों को भी कम करने में हेल्प करता है। तो भाई ये थी फरीदाबाद की आज अच्छी खबर, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं लेकर आऊंगी। लेके तब तक के लिए इंतजार कीजिए और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक का।

अभी अभी गया है, फ्रेंडशिप डेड, और फिर से दुनिया भर के दोस्त ऑनलाइन हो गए हैं।

0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संदीरा, सिर्फ तुम्हारा।

0: के बाद।
1: सरहद पर खड़े उन हीरोज के लिए क्या आपके दिल में भी कोई पैगाम है? क्या है ये पहल? जल्द ही पता लगेगा 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: मेरा नाम डॉक्टर आनंद है। आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सर्वोदय सेक्टर 8। जैसे कि आपने वैसे ही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इस मदर्स मिल्क यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग कि माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में वो पर्याप्त मात्रा में हैं। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है, और जिस क्वांटिटी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 months में। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ दवाइयां या ORS वो आप दे सकते हैं 6 महीने से कम के बच्चे में। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ओनली।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

0: यू नो सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: हेलो हेलो जी, फिर से लौट आई हूँ मैं और अब बात ही नहीं करने वाली है। अब मैं ना पहेली का जवाब जानने के लिए आई हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने एक पहेली पूछी थी और पहेली थी फरीदाबाद की ऐसी कौन सी जगह है जिसे हर कोई पसंद करता है। तो वक्त हो गया है हमारे फरीदाबाद की पहेली का जवाब जानने का, लेकिन उससे पहले ना मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ हमारे सभी लिसनर्स का, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे जवाब आए हैं और बहुत सारे जवाब सही भी हैं। लेकिन जो जवाब सबसे पहले आया, बात करते हैं उनकी। चलिए पहले सुनते हैं कि इस पहेली का आखिर जवाब क्या है।
1: हाय अंजलि, गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम पलक है। अभी तुमने जो पहेली पूछी थी वो तो फरीदाबाद की बहुत फेमस जगह है। वहाँ तो मैं ना अपने बचपन से जाती आ रही हूँ। अपनी फैमिली के साथ ना अलग ही वाइब है उस जगह की। तो यार वो जगह है फरीदाबाद की बड़कल झील। थैंक यू।
0: थैंक यू पलक, बहुत अच्छे से फरीदाबाद को जानते हो। और जैसे कि आपने बताया ना कि आपका बचपन बीता है यहाँ पर, मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह से आपने बचपन यहाँ पर बिताया है ना, ऐसे ही पूरी जिंदगी आप इस फरीदाबाद की जगह से जुड़े रहे और साथ ही एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ मी टाइम यहाँ पर। और इसी के साथ ही आपका आंसर एकदम सही था। ये बताता है कि आप फरीदाबाद को कितने अच्छे से जानते हैं। लेकिन जिन्होंने आज अपना आंसर मिस कर दिया है, टेंशन मत लीजिए, कल फिर से लौटूंगी एक और नई पहेली के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं, कभी कभी करंट भी लगता है, और इस करंट का नाम है खतरों के खिलाड़ी 15। रोहित शेट्टी वंस अगेन इज बैक, और इस बार भी उनका मिशन बिल्कुल क्लियर है, कंटेस्टेंट के कंफर्ट जोन को परमानेंटली अनइंस्टॉल कर देना। नए सीजन फुल लॉन एक्शन मोड में है, हेलीकॉप्टर हो, पानी हो, क्रीपी क्रूल आइस हो या स्काई हाई स्टंट्स, यहाँ हर एपिसोड एक रिमाइंडर है कि घर की EMI भरना शायद इन स्टंट से ज्यादा आसान है। इस सीजन के कंटेस्टेंट लाइनअप भी काफी इंटरेस्टिंग है, हर कोई ट्रॉफी जीतने आया है, लेकिन स्टंट शुरू होते ही सबकी बॉडी लैंग्वेज एक ही बात बोलती है, मम्मी मैं घर आ जाऊं क्या। और रोहित शेट्टी उनके एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि उन्हें कंटेस्टेंट से ज्यादा मजा उनके रिएक्शन देखने में आता है। सोशल मीडिया पर भी शो को लेकर काफी ज्यादा बस बना हुआ है, फैंस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टंट्स की क्लिप्स वायरल हो रही हैं, और हर एपिसोड के बाद एक ही डिबेट चलती है, ये स्टंट में मैं होता तो भाई मैं तो कर लेता। हाँ जी, सोफे पर बैठकर तो हम सब कर ही सकते हैं ना। तो फिलहाल सीजन ने जबरदस्त स्टार्ट लिया है, अब देखना ये है कि कौन अपने डर को हरा कर ट्रॉफी तक पहुँचता है और कौन सिर्फ मीम्स का फेवरेट बनकर रह जाता है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। तो अगली अपडेट में फिर मिलेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक और फ्रेश डोज के साथ।

हाँ जी, वीकेंड में आ गए हैं तो अब तैयारियां तो जोरों से करनी पड़ेंगी ना, किस चीज की वीकेंड एंजॉय करने की। तो भाई बहुत सारी बातें आज मैंने आपके साथ की, बहुत सारी चीजें मैंने आज आपके साथ शेयर किया। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने बताया ना, उस फैक्ट का हमेशा ख्याल रखिएगा, यानी कि एक ही दिल है आपके पास और वो दिल टूटना नहीं चाहिए, अपने दिल का ख्याल रखिएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग वीकेंड में जा रहे हैं और आई नो वीकेंड ना किस तरह से हम लोग प्लान करते हैं, तो इस बार थोड़ा सा हेल्दी वीकेंड प्लान करेंगे। हेल्दी वीकेंड ये है कि डिजिटल डिटॉक्स करेंगे, खुद को फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वन के साथ ज्यादा टाइम बिताएंगे। लेकिन उससे पहले अब टाइम हो गया है ये जानने का कि आज आखिर मेरे टिफिन में क्या है, बिकॉज वीकेंड आ गया यार। वीकेंड आते आते ना कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग हो जाती है मुझे, और जैसे ही मैं अभी स्टूडियो से बाहर जाऊंगी ना, तो मैं यही पूछने वाली हूँ आज अपने जितने भी कॉलिग्स आए होंगे कि भाई आज क्या लेकर आए हो टिफिन में, और जहां मुझे लगेगा ना कि कुछ इंटरेस्टिंग है आज, तो बस आज वो टिफिन मेरा हो जाएगा। खैर अगर आज अपने टिफिन की मैं बात करूँ ना, तो आज मेरे टिफिन में आया है गर्मा गर्म राजमा राइस। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझसे वेट ही नहीं हो रहा है।

रेडियो महारानी से मैं हूँ आरजे मोनिक और इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। मैं मोनिक यहाँ ढेरों बातें चर्चाएं फिल्मी करियर से फिल्मी पिटारे से आप सबके लिए लेकर के आया हूँ, जहाँ आज बात करेंगे कुछ ऐसे टीवी स्टार्स के बारे में जो कि टीवी से निकल के बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा और छा गए, और कुछ बॉलीवुड के ऐसे गुमनाम चेहरे जिन्होंने ओटीटी पर मचाया धमाल और अपनी फैन फॉलोइंग में करी बढ़ोतरी। और वही बात करेंगे टीवी के कुछ ऐसे विलन्स के बारे में जिनकी चर्चाएं भैया इतनी खूब होती हैं कि उनके एक एक डायलॉग को फैंस बहुत ज्यादा पसंद किया करते हैं। और वही 90 के दशक के कुछ ऐसे कॉमेडी शो जिनको आज भी देखना हर कोई पसंद करता है। तो बॉलीवुड के गलियारे से बॉलीवुड के पिटारे से ऐसी और भी ढेरों चर्चाएं आप सबके लिए लेकर के आऊंगा कुछ अपकमिंग स्टार्स के बारे में, तो कुछ आने वाली बेहतरीन कहानियों के बारे में, कुछ नई जोड़ियां दिखेंगी सिल्वर स्क्रीन पर। तो इसी के साथ साथ कुछ फ्रेंचाइज की अगली किश्त बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि बॉलीवुड का पिटारा खोलने से पहले सुना देता हूं कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके। और ज्यादा ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए

गाना फ्रॉम द मूवी रंग दे बसंती, और इसी के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं, देखिए वक्त के साथ साथ कॉमेडी का अंदाज भी बदल गया। अब डार्क कॉमेडी करना एक कूल बात मानी जाती है, लेकिन सच्चाई है कि आज भी लोग टीन कॉमेडी देखना बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल वैसे ही कॉमेडी लोगों को भाती है जैसी 90 के दशक के कॉमेडी सीरियल्स छा जाया करते थे, और आज भी उन सीरियल्स को देखना लोग पसंद करते हैं। तो इसी कड़ी में अगर बात करूं, देखिए कॉमेडी स्टैंड अप शो के नाम पर आजकल बहुत सारे स्टार्स छाए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही 90 के दशक के में किरदारों की और टीवी शोज की बात करूं जिनको लोग बहुत ज्यादा प्यार दिया। तो देख भाई देख एक कॉमेडी शो जहां दीवान परिवार के तीन पीढ़ियों की कहानी कहता नजर आता है, जिसमें शेखर कपूर, फरीदा जलाल, सुषमा सेठ, अमर उपाध्याय जैसे स्टार्स नजर आए, और इन टीवी शो से शुरुआत करके फिर कैसी अच्छा खासा प्यार बटोरा और लोगों कितना हंसाया आप सब जानते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हम पांच के बारे में। इस कॉमेडी शो में आनंद माथुर और उसकी पांच बेटियों की कहानी दिखाई गई, जहां मीनाक्षी, राधिका, स्वीटी, काजल और छोटी नाम की पांच बेटियां हैं, और हर बेटी का अंदाज हरकतें ऐसी है कि दर्शक लोटपोट हो जाते हैं। इस सीरियल में एक समय में विद्या बालन भी नजर आई थी, और इस किरदार को इस सीरियल को लोगों ने बहुत पसंद किया। और इसके बाद बात करते हैं एक और बहुत बढ़िया कहानी के बारे में, जबान संभाल के। ये कॉमेडी शो एक ब्रिटिश शो माइंड योर लैंग्वेज का हिंदी वर्जन बनाया गया। इसमें पंकज कपूर ने एक लैंग्वेज टीचर का किरदार निभाया। इस सीरियल में हिंदी भाषा सीखने के कई लोग आते हैं, और इनकी बातचीत के जरिए ही हंसी का माहौल बन जाता है। देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा, देखिए अगर आज के किड्स की बात की तो बिल्कुल ये कॉमेडी शो देखिए, आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। फिर बात करता हूँ श्रीमान श्रीमती। आज कपिल शर्मा शो पर अर्चना पूरन सिंह जज की कुर्सी पर बैठकर खूब हंसती है, लेकिन 90 के दशक में अर्चना पूरन सिंह ने श्रीमान श्रीमती सीरियल के जरिए दर्शकों को खूब हंसाया भी है। इस सीरियल में दो अलग अलग शादीशुदा जोड़ों की कहानी है, ये आपस में पड़ोसी हैं, और पड़ोसियों की नोकझोंक किस फनी तरीके से बाहर आती है ये भैया श्रीमान श्रीमती सीरियल को देखने वाले अच्छे से जानते हैं। अब जाते थे एक नाम और लेना चाहूंगा, फ्लॉप शो। टीम कॉमेडी करने के लिए जसपाल भट्टी जाने जाते थे, और जसपाल भट्टी बेशक आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी एक कॉमेडी, उनका ये अंदाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। उनका एक शो फ्लॉप शो आता था, और ये स्टायर कॉमिक शो था। सिस्टम, पॉलिटिक्स, समाज, सभी पर एक सीरियल कॉमेडी के जरिए कटाक्ष करता था, और इस शो में जसपाल भट्टी के साथ उनकी पत्नी सविता भी नजर आती। तो 90 के दशक के कुछ ऐसे सीरियल जिनको लोग देखना पसंद किया करते थे, और अगर आज भी इनको रिपीट भी देखा जाए तो भैया अपनी हंसी को आप रोक नहीं पाएंगे। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें चर्चाएं तो लेकर के आती रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना आप सभी।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: मेरा नाम डॉक्टर रवि शेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश और बदलते हुए मौसम में सांस के मरीजों के लिए काफी तकलीफें आ सकती है। खास तौर पे ध्यान रखने की बात होती है कि जैसे ही बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में नमी बढ़ती है, तो वायरल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। साथ ही में बारिश के मौसम में हम गर्मी से सर्दी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो इस चेंजिंग वेदर में सांस के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है। खासतौर पर जिनको एस्थमा या सीओपीडी नाम की बीमारी है, उनकी सडनली वर्सनिंग होने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको इनहेलर या नेबुलाइजर चलते हैं तो उसको इस मौसम में बिल्कुल भी बंद ना करें। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग।

नेगेटिव रोल को लोगों ने कितने बढ़िया तरीके से सराहा आप जानते ही। अभय दिल था मेरी एक ऐसा किरदार जिसके हर डायलॉग में एक अलग ही अंदाज। कई बार किरदार बेशक किसी को डांट रहा हो लेकिन उनका डायलॉग इतना धमाकेदार कि कई बार तो हंसी भी छूट जाया करती थी। अब बात करता हूँ साल 2009 में सीरियल प्रतिज्ञा में एक बहुत ही बढ़िया किरदार निभाने वाले अनुपम श्याम जी के बारे में जिन्होंने ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाया। अनुपम श्याम की लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें और बुलंद आवाज ने इस किरदार में एक अलग ही जान डाल दी थी और इससे किरदार को बहुत ज्यादा फेम मिला। कई लोगों का तो ये भी कहना कि प्रतिज्ञा की कहानी कितनी अच्छी है नहीं जानते, लेकिन प्रतिज्ञा सीरियल हम लोग इसलिए देखा करते हैं कि ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार और उनका वह रुतबेदार जो डायलॉग जो बोलते हैं बड़ा पसंद आ। फिर बात करता हूँ सुदेश बेरी के बारे में। टीवी पर अलग अलग तरह के इन्होंने किरदार निभाए लेकिन साल 2009 में सीरियल अगले जन्म है बिटिया ही कीजो में लोहा सिंह के किरदार में उन्हें अलग ही पहचान दी। लोहा सिंह अपने परिवार की मान मर्यादा को बचाने के लिए किसी को भी परेशान करने से पीछे नहीं रहता था और बस इसी किरदार को और इसी अंदाज को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार किया। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें चर्चा लाता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।

वेलकम बैक गाइज, यू आर लिसनिंग टू फेवरेट सेगमेंट सिनेमा कैप्सूल। मैं हूँ आरजे गीत और यहाँ मैं रिव्यूज नहीं देती बल्कि बताती हूँ कि वीकेंड का डेटा पैक इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मुसाफिर कैफे की, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है इन दिनों। अब ऑनेस्टली ओटीटी पर इतना अच्छा कॉन्टेंट आ रहा है, रिमोट से ज्यादा तो थम वर्कआउट कर लेता है। हाफ एन आवर सिर्फ स्क्रॉल करने में निकल जाता है और एंड में वही पुराना सिटकॉम ऑन। लेकिन मुसाफिर कैफे इज अ लिटिल डिफरेंट। सबसे पहले विक्रांत मेसी, ये बंदा भाई एक्टिंग नहीं करता, बस स्क्रीन पर आ जाता।

जाता है और बाकी के इमोशंस ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। इसको ओवर एक्टिंग का पासवर्ड शायद आज तक मिला ही नहीं। और अच्छी बात यह है कि ये सीरीज अननेसेसरीली लाउड बनने की कोशिश नहीं करती, ना फोर्स्ड एक्शन, ना रैंडम ट्विस्ट, ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर सीन में चलता रहता है, बल्कि एवरीथिंग फील सिंपल ऑर्गेनिक। वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी काफी नेचुरल लग रही है। तीनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर बिल्कुल एफर्टलेस फील होती है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो स्लो कन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं, जो कॉफी पे दो घंटे बैठ सकते हैं और जिन्हें हर 10 मिनट में एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हर एपिसोड के बाद बोलते हो बस ट्विस्ट कहाँ है यार, तो मे बी दिस वंस नॉट योर कप ऑफ कॉफी। लेकिन अगर मूड है समथिंग काम, फील गुड और जेन्युइनली वेल परफॉर्म देखने का, देन मुसाफिर कैफे डेफिनेटली डिजर्व अ चांस। मैं हूँ गीत और मिलते हैं नेक्स्ट सिनेमा कैप्सूल में, क्योंकि ओटीटी पर कंटेंट खत्म हो सकता है लेकिन भाई मेरी बातचीत खत्म नहीं होगी। तो वक्त है गाने का, गाना सुनकर आते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

किसी खूबसूरत गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर में फिल्मी टॉनिक। यहाँ आप दोस्तों बात करते हैं फिल्मों में। देखिए, कई किरदार ऐसे होते हैं जो दर्शकों को ताउम्र याद रहते हैं। कई बार तो कलाकार का नाम दर्शक भूल जाते हैं, लेकिन किरदार का नाम कभी नहीं भूलते। और वेब सीरीज की दुनिया में भी कुछ ऐसे ही एक्टर्स हैं जिनके निभाए किरदार ही दर्शकों को याद रहते हैं। बेशक असल नाम भूल गए हो, लेकिन उनके किरदारों का नाम आज भी ज़बान पर रहता है। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करना चाहूंगा पंचायत वेब सीरीज के प्रहलाद चाचा के बारे में। देखिए, पंचायत के कई सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज में फैजल मलिक ने प्रहलाद चाचा का रोल निभाया। ये किरदार दर्शकों के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इनके डायलॉग्स पर मीम्स भी बनना शुरू हो गए। प्रहलाद चाचा रिश्तों की, परिवार की और दोस्ती अहमियत दर्शकों को बताते नजर आते। इस सीरीज में विनोद यानी कि अशोक पाठक और बंदराकस दुर्गेश कुमार के किरदार को भी ऐसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। आगे बात करते हैं गुल्लक की बिट्टू की मम्मी के बारे में। जी हाँ, वेब सीरीज गुल्लक में सुनीता राजवार ने बिट्टू की मम्मी का किरदार निभाया था और बिट्टू की मम्मी इस वेब सीरीज में मुख्य भूमिका में नजर आई। वह आए दिन इस परिवार के घर में चली आती और कुछ ना कुछ खुराफात करती, और इनकी इसी खुराफाती कहानियों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। बात करता हूँ ऐसी एक और बेहतरीन वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री के बारे में। जितेंद्र कुमार कई वेब सीरीज में लीड रोल कर चुके हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्यार मिला कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया के रोल में, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी नाम से उन्हें आज जाना ही जाना है। वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री में जितेंद्र कुमार ने एक कोचिंग सेंटर के टीचर का रोल निभाया, जो बच्चों को खूब सपोर्ट करते नजर आते हैं। अब बात करता हूँ भैया एक और बहुत बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में, जिस वेब सीरीज की दीवान लोगों के सर पर चढ़कर बोलती है। वेब सीरीज मिर्जापुर में कालीन भैया की पत्नी दीना का रोल एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने निभाया, और इस सीरीज में ये किरदार काफी दमदार था। इस किरदार रश्मिका दुग्गल के एक्टिंग करियर का बेस्ट और पॉपुलर करेक्टर रहा। तो दोस्तों, ऐसी और भी किस्से कहानियां बॉलीवुड के पिटारे से कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म से आप सबके लिए लेकर के आता रहूंगा। लेकिन उससे पहले सुना देता हूँ एक और खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

89.6 रेडियो महारानी पर 1947 वापस आ रहा है। कब, कहां, कैसे, जल्द पता लगेगा।

बार ना कई चीजों को सुनकर देखकर ऐसे लगता है कि ये तो कभी नहीं पता था ये कैसे हुआ। तो बस ऐसी बातें करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ और टाइम हो गया इंटरेस्टिंग फैक्ट का। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आज मेरे पिटारे में आखिर ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कई बार ना हमें ऐसी चीजें पता चलती है जिन्हें सुनने के बाद ना सीधा ये निकलता है सही में ऐसा भी हो सकता है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपको पता है ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। अब आपको आपके एक्स की याद आ गई होगी क्योंकि वो आपका जो एक दिल था वो भी तोड़कर चली गई ना। कोई बात नहीं, आज अपना दिल साइड रखकर ऑक्टोपस के 3 दिल की बात सुन लेते हैं। अगर मैं 3 दिल की बात करूँ तो तीनों दिल का काम है, 2 दिल ऑक्टोपस की गिल्स तक खून पहुंचाते हैं और जो तीसरा दिल है वो पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। तो ये जो तीनों दिल है ना वो अपना काम बराबर करता है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब ऑक्टोपस तैरता है ना तो उसका जो मेन दिल होता है वो कुछ देर के लिए धड़कना बंद कर देता है और यही रीजन है कि ऑक्टोपस बहुत देर तक तैरना पसंद नहीं करता। नेचर के पास वाकई कमाल का सरप्राइज, और कई बार लगता है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट भी करती है। तो जरूर कहते हैं, अब आप ये सोचिए अगर ऑक्टोपस की गर्लफ्रेंड उसका दिल तोड़ भी देना तो फिर भी उसके पास 2 दिल है तो वो 2 दिल से काम चला लेगा, लेकिन आपके पास एक ही दिल है तो अपने दिल का ख्याल जरूर रखेगा। और पता है ना हार्ट हेल्थ का ख्याल कैसे रखता है, तो बस हो जाइए शुरू और साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: पिक्चर परफेक्ट, म्यूजिक लोडेड, ओनली विद आरजे मॉर्निंग।
5: फिल्मी फ्लेवर।

सुमंदा शर्मा की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर। मैं मॉनिक। देखिए दोस्तों, साउथ से लेकर बॉलीवुड तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन पीरियड वॉर ड्रामा फिल्मों की अगर मैं यहाँ बात करूँ, जो कि लोगों के दिलों पर तो छाई छाई, साथ ही साथ सिल्वर स्क्रीन पर भी छाई रही ये कहानियां काफी लंबे वक्त तक। यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ पद्मावत। संजय लीला भंसाली की ये फिल्म पद्मावत में रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिका निभाई थी और ये फिल्म महाराजा रतन सिंह और रानी पद्मावत की कहानी पर बनाई गई है और इस फिल्म के किरदारों को अच्छा खासा प्यार मिलता नजर आया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 300 करोड़ से ज्यादा ही कमाई करी। इसके बाद बात करते हैं और बहुत बेहतरीन कहानी तानाजी द अनसंग वॉरियर, अजय देवगन की ये बहुत बढ़िया फिल्म जिसको 2020 में रिलीज किया गया। ओम राउत ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया। फिल्म में तानाजी मालू सरे के संघर्ष और वीरता को दिखाया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 280 करोड़ की कमाई करके लोगों के दिलों पर छा गई थी। फिर बात करता हूँ बाजीराव मस्तानी। सुनीला भंसाली की एक और बहुत बढ़िया फिल्म बाजीराव मस्तानी, जहाँ रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आए। 2015 में रिलीज की गई ये फिल्म छत्रपति बाजीराव और मस्तानी की कहानी को दिखाया गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 185 करोड़ की शानदार कमाई करी थी। ऐसे ही बात करता हूँ पोन्नियिन सेल्वन 1 और 2 के बारे में। पहली कहानी को 2022 में रिलीज किया गया, जहां पे मणिरत्नम ने इस कहानी को डायरेक्ट किया था। विक्रम और ऐश्वर्या राय जैसे दिग्गज स्टार्स नजर आए और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक साम्राज्य चोल वंश पर बनी हुई कहानी ने 266 करोड़ की कमाई करी और जब इसका अगला पार्ट रिलीज किया गया 2023 में, तो इस कहानी ने भी 200 करोड़ का आंकड़ा तो छू ही लिया। तो ऐसी इंडियन पीरियड ड्रामा फिल्म्स को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है और आगे भी फैंस की उम्मीद है कि ऐसी कहानी को और सिल्वर स्क्रीन लाया जाए। बाकी ऐसी बातें चर्चा लाता रहूंगा।

फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं बहुत ही ऐसी कहानियां जो कि आज के दौर में हाई बजट फिल्म मानी जाती हैं, कोई 500 करोड़ में बनी तो कोई 1000 करोड़ में। लेकिन दोस्तों देखिए, बात करूं 1960 के दौर की एक ऐसे डायरेक्टर के आसिफ साहब, जिस दौर में लगभग कहानियों के बजट की बात की जाए, एक नॉर्मल बजट की बात की जाए तो 20 से 30 लाख और अपर हाइयर बजट फिल्म रहती थी तो 50 से 60 लाख। लेकिन 1960 के दौर में के आसिफ साहब ने एक कहानी बनाई, जिस कहानी की हम बात करें मुगले आजम, जिस कहानी को बनाने में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे के आसिफ साहब ने, और उस दौर की सबसे ज्यादा महंगी फिल्मों में से एक फिल्म रही थी 1.5 करोड़ रुपए, जबकि कहानियां 20-30 लाख के बजट में बनती थी और 1 करोड़ का आंकड़ा अपनी कमाई का भी पूरा नहीं कर पाती थी। लेकिन इस कहानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बनी और 11 करोड़ रुपए की कमाई अपने नाम करी, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड रहा था। मुगले आजम कहानी आप सब जानते हैं, जिस हिसाब से उस फिल्म का सेट बनाया गया था उस कहानी को कोई भी नहीं भूल सकता। मुगले आजम की अगर बात की जाए तो देखिए, आज की कलेक्शन के हिसाब से लगभग 1000 करोड़ रुपए कमाए थे मुगले आजम ने उस दौर में, जब प्रमोशन के लिए ना तो कोई यूट्यूब चैनल था और ना ही सोशल मीडिया। तो के आसिफ साहब की हिम्मत की दाद आज भी लोग दिया करते हैं कि भैया उस दौर में इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की हिम्मत उन्होंने जुटाई। और जब फिल्म को रिलीज किया गया तो दिलीप कुमार और मधुबाला के किरदारों को लोगों ने बहुत पसंद किया, मुगले आजम की कहानी को पसंद किया और स्पेशली उसके सेट को जिस हिसाब से बनाया गया था औसम। जैसे बात की जाए आज के दौर में आमिर को मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है, 1960 के दौर में के आसिफ साहब को मिस्टर परफेक्शनिस्ट के तौर पर जाना जाता था। कई सीन्स तो ऐसे थे जब एक एक सीन को परफेक्ट तरीके से शूट करवाने के साथ साथ 8-8 दिन गुजार दिया करते थे के आसिफ साहब, जब तक उन्होंने जिस हिसाब से सोचा वैसा सीन नहीं शूट हो जाया करता था। तो के आसिफ साहब की बनी एक बहुत बेहतरीन फिल्म मुगले आजम को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और आज भी लोग इस कहानी को जब देखा करते हैं तो सल्यूट किया करते हैं। बॉस इतनी ज्यादा बेहतरीन कहानी आज के दौर में इतनी आसानी से बनाना पॉसिबल नहीं। बाकी ऐसी और ढेरों बातें चर्चा आप सभी लेकर के आता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना आप सभी।

एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

गाना है फ्रॉम द मूवी नमस्ते लंदन और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड में सक्सेसफुल करियर बनाने वाले कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ आयुष्मान खुराना। 2004 में रोडीज के विनर रहे और उसके बाद बॉलीवुड में डेब्यू किया। विक्की डोनर ने कहानी दी और इस कहानी को लोगों ने बहुत प्यार दिया। फिर नोटेबल कहानियों की बात की जाए, अंधाधुन, आर्टिकल 15 और ड्रीम गर्ल जैसी कहानियों में किरदार निभा करके अच्छा खासा प्यार बटोरा। फिर बात करता हूँ मृणाल ठाकुर के बारे में। 2014 से 16 के बीच में टीवी पर कुमकुम भाग्य में किरदार निभाया और उसके बाद जब बॉलीवुड में डेब्यू किया 2018 की बात ही लव सोनिया से। सुपर 30, जर्सी और सीतारमम जैसी कहानियों में प्यार बटोरती नजर आई। फिर बात करता हूँ प्राची देसाई। टीवी शो जिसको 2006-08 में रिलीज किया गया कसम से जैसे सीरियल्स के साथ प्यार बटोरा और उसके बाद जब बॉलीवुड में मौका मिला रॉक ऑन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बोल बच्चन जैसी कहानियों में प्यार बटोरती नजर आई। पहली बात करते हैं एक और जाना माना चेहरा यामी गौतम। चांद के पार चलो ये प्यार ना होगा कम जैसे कहानियों के साथ टीवी शोज में बहुत अच्छा खासा किरदार निभाया। फिर जब बॉलीवुड में उनका डेब्यू हुआ विकेट ओवर कहानी से और उसके बाद उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, OMG 2 जैसी कहानियों में प्यार बटोरती नजर आई। ऐसी कुछ और चेहरों की मैं बात करूं, सुशांत सिंह राजपूत बेशक आज हमारे बीच नहीं लेकिन उनके किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। पवित्र रिश्ता से उन्होंने शुरुआत करी थी, फिर बॉलीवुड में डेब्यू किया काय पहुंचे और उसके बाद MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे और केदारनाथ जैसी कहानियों में उनके किरदार को उनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा सराहा गया। करण सिंह ग्रोवर दिल मिल गए 2007 से 2010 के बीच ये शो टीवी पर प्रीमियर हुआ और बॉलीवुड में जब डेब्यू का मौका मिला तो 2015 की बात थी, एलोन से डेब्यू किया और उसके बाद हीट स्टोरी 3 के किरदार को इनको बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत फेम मिला इस किरदार का। वैसे कुछ ऐसे और पुराने चेहरों की अगर मैं और जाऊं तो एक और बहुत बढ़िया स्टार मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, कुछ विद्या बालन जिन्होंने भी टीवी से ही शुरुआत करी थी और उसके बाद बॉलीवुड में अच्छा खासा प्यार कमाया। SRK की बात करते हैं हम, इन्होंने भी टीवी के एक बहुत बढ़िया सीरियल फौजी और सर्कस से शुरुआत करी और फिर बॉलीवुड डेब्यू किया देवाना से। तो देखिए बहुत ऐसे स्टार जिन्होंने अच्छी खासी मेहनत करी और आगे बढ़े और आज बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम कमाते नजर आ रहे। बाकी ऐसी बड़ी बातें चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत आप सभी।

हेलो हेलो एंटरटेनमेंट के पागल लोग, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, जहां हम स्क्रीन के इस पार की दुनिया को थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा फनी और फुल मसालेदार अंदाज में डिकोड करते हैं। तो भाई, जिस शो ने जेल के अंदर से इतना ड्रामा बाहर भेजा कि घर बैठे लोगों को भी लगा भाई हमारी लाइफ तो काफी पीसफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉकअप की। तो अब लॉकअप पहुंच चुका है अपने ग्रैंड फिनाले के दरवाजे तक, और जैसे जैसे ट्रॉफी करीब आ रही है, कंटेस्टेंट के असली गेम प्लान भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी शो का रूल सिंपल है। शुरुआत में सब बोलते हैं मैं ना यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ, और फाइनली आते आते वही दोस्ती बदल जाती है, सॉरी ब्रो, ट्रॉफी के बीच में फ्रेंडशिप नहीं आती। इस शो में फाइट्स भी मिले, इमोशंस भी मिले, सीक्रेट्स भी मिले, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहाँ ऑडियंस ने रिमोट नहीं बल्कि अपना पेशेंस पकड़ रखा था। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन बनेगा लॉकअप का अल्टीमेट विनर? किसके फैंस करेंगे सबसे ज्यादा नॉइस? किसका गेम पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्ग? और कौन निकलेगा असली जेल का बाजीगर? क्योंकि रियलिटी शो में आखिरी वीक में ना भाई कंटेस्टेंट नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजी का मेकओवर होता है। तो अगर आप भी पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस फाइनल धमाके का, तो बने रहिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ। मैं हूँ गीत और चल रहा है सिनेमा का कैप्सूल।

यहाँ बात करते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जो कि बिग स्क्रीन से यानी कि सिल्वर स्क्रीन से बिल्कुल ही गायब हो गए और OTT प्लेटफॉर्म ने उनको एक जबरदस्त कमबैक दिया, एक नई पहचान बनाई। यहाँ कुछ ऐसे ही स्टार्स के बारे में मैं बात करने वाला। सबसे पहले बात करूंगा बॉबी देओल। 90s में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी सोल्जर, गुप्त और बादल जैसी कहानियों के साथ, लेकिन काफी टाइम से सिल्वर स्क्रीन पर गायब रहे और कमबैक मिला आश्रम वेब सीरीज से। जिस आश्रम वेब सीरीज में इनको बहुत ज्यादा प्यार मिला और उसके बाद बॉलीवुड में फिर से दिखाई दिए एनिमल की कहानी के साथ। फिर बात करता हूँ मनोज बाजपेयी। अपने करियर की शुरुआत सत्य और शूल जैसी कहानियों के साथ और कुछ वक्त तक सिल्वर स्क्रीन पर नहीं नजर आए, लेकिन जैसी द फैमिली मैन जैसी कहानी इनके नाम इनके हाथ लगी तो इस द फैमिली मैन ने इनको एक अलग ही पहचान दिलाई और OTT ने अच्छा खासा रोल निभाया इनके कमबैक के लिए। अब बात करते हैं रहना है तेरे दिल में। वैसे इस कहानी का नाम लेते सर आप स्टार का नाम तो जान ही होंगे, आर मान। बॉलीवुड में और साउथ इंडस्ट्री में दोनों में हिट फिल्म्स इनकी रही, लेकिन जैसे ही OTT पर लंबे अरसे बाद इनका नाम अनाउंस हुआ दी कपल से तो फैंस बहुत ज्यादा खुशी हुई। चली लंबे अरसे बाद ही सही, लेकिन आर माधवन फिर से कमबैक करते नजर आए। ऐसी अब बात करते हैं सुष्मिता सेन के बारे में। 90 से 2000 में टॉप एक्ट्रेस में रही जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी के साथ, बीवी नंबर वन, मैं हूं ना और फिर बॉलीवुड से बिल्कुल ही दूरी बना ली। लेकिन जब कमबैक किया तो OTT प्लेटफॉर्म पे आर्या जैसी कहानी के साथ कमबैक करके इन्होंने फिर से फैंस के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली। इस लिस्ट में से स्टार्स तो बहुत सारे शामिल हैं, मैं यही बात करूं तो विवेक ओब्रॉय, बहुत सारी कहानी इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में किरदार निभाए और अच्छा खासा प्यार बटोरा। लेकिन विवेक ओब्रॉय भी यार इंडस्ट्री से काफी दूर होते नजर आए, ना ही कोई किरदार निभाते नजर आए, ना ही कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट की कोई इन्होंने जानकारी दी। लेकिन जैसे ही एकदम से फैंस को पता चला सोशल मीडिया कि भाई OTT पर कमबैक कर रहे हैं वो भी इनसाइड एज से, तो फैंस का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और जैसे ही कहानी को रिलीज किया गया तो फैंस ने खूब इनके किरदार की वाहवाही की। और अब एक किरदार ऐसा, अर्शद वारसी। बॉलीवुड करियर मुन्ना भाई MBBS धमाल के बाद थोड़ा सिल्वर स्क्रीन से दूर होते नजर आए, लेकिन भाई OTT प्लेटफॉर्म ने जिसे हर किसी को मौका दिया अर्शद वारसी को भी एक मौका दिया असुर। और फैंस का ये कहना है भाई अर्शद वारसी का अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया किरदार रहा असुर। असुर में इनका जो किरदार था इतना ज्यादा माइंड ब्लोइंग, अपने करियर से बिल्कुल हट करके किरदार निभाया जहाँ इस कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। वैसे देखिए ये बात तो सच है कि OTT प्लेटफॉर्म ने ऐसे बहुत से स्टार्स को मौका दिया और फिर से उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बनाया अपनी कहानियों के साथ। बाकी ऐसे चर्चा लाता रहूंगा, उससे पहले एक और खूब चलता है।

0: पतंजलि।
1: कई बार ना कई चीजों को सुनकर देखकर ऐसे लगता है कि ये तो कभी नहीं पता था ये कैसे हुआ। तो बस ऐसी बातें करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ और टाइम हो गया इंटरेस्टिंग फैक्ट का। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आज मेरे पिटारे में आखिर ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कई बार ना हमें ऐसी चीजें पता चलती है जिन्हें सुनने के बाद ना सीधा ये निकलता है सही में ऐसा भी हो सकता है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपको पता है ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। अब आपको आपके एक्स की याद आ गई होगी क्योंकि वो आपका जो 1 दिल था वो भी तोड़कर चली गई ना। कोई बात नहीं, आज अपना दिल साइड रखकर ऑक्टोपस के 3 दिल की बात सुन लेते हैं। अगर मैं 3 दिल की बात करूँ तो 3 दिल का काम है। 2 दिल ऑक्टोपस के गिल्स तक खून पहुंचाते हैं और जो 3रा दिल है वो पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। तो ये जो 3 दिल है ना वो अपना काम बराबर करता है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब ऑक्टोपस तैरता है ना तो उसका जो मेन दिल होता है वो कुछ देर के लिए धड़कना बंद कर देता है और यही रीजन है कि ऑक्टोपस बहुत देर तक तैरना पसंद नहीं करता। नेचर के पास वाकई कमाल का सरप्राइज। और कई बार लगता है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट भी करती है तो जरूर कहती है। अब आप ये सोचो अगर ऑक्टोपस की गर्लफ्रेंड उसका दिल तोड़ भी देना तो फिर भी उसके पास 2 दिल है तो वो 2 दिल से काम चला लेगा, लेकिन आपके पास 1 ही दिल है तो अपने दिल का ख्याल जरूर रखेगा। और पता है ना हार्ट हेल्थ का ख्याल कैसे रखता है, तो बस हो जाइए शुरू और साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

बहुत ही खूबसूरत गाना नगाड़ा संग ढोल बाजे। इस गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। और देखिए दोस्तों, अगर यहाँ गाने की बात हुई है तो क्यों ना बॉलीवुड के कुछ ऐसे गानों की बात करें जहाँ कुछ फिल्मों को इतना ज्यादा प्रमोशन या इतना ज्यादा प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन उनके गानों ने अच्छा खासा प्यार बटोरा। यहाँ अगर मैं सबसे पहले बात करूँ एक बहुत ही बढ़िया कहानी चाइना गेट के बारे में, 1998 में इस कहानी को रिलीज किया गया और इस कहानी का गाना छम्मा छम्मा जो कि इस मूवी से ज्यादा प्यार बटोरता नजर आया। फिल्म बेशक उतनी ज्यादा अच्छी साबित नहीं हुई, लेकिन उर्मिला मातोंडकर का ये डांस सॉन्ग लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिर बात करते हैं यस बॉस, 1997 में इस कहानी को रिलीज किया गया था। फिल्म SRK की थी जहाँ पे हमें जूही भी नजर आई। और इस गाने की मैं बात कर रहा हूँ, उस गाने का नाम है एक दिन आप। ये एक गाना चार्ट बस्टर बन गया था। इस गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। कहानी को तो प्यार मिला ही, लेकिन ये गाना शायद कहानी से भी ज्यादा फेमस हुआ। फिर बात करते हैं रेस, जिसको 2008 में रिलीज किया गया पहली नजर में। फिल्म हिट थी, लेकिन इस गाने का क्रेज आज भी उतना ही है जितना उस दौर में था। आतिफ असलम का मैजिकल वॉइस और रोमांटिक वाइब्स अच्छी खासी मैच हुई लोगों के फैन फॉलोइंग के साथ। फिर बात करता हूँ तुम ही हो फ्रॉम द मूवी आज की 2। फिल्म तो चल गई थी, लेकिन गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि उसने अरिजीत सिंह को सुपरस्टार बना दिया। हर्ट टचिंग लिरिक्स और अरिजीत सिंह की सोलफुल आवाज, दोनों का मैच अच्छा खासा प्यार बटोरते नजर आया। फिर बात करते हैं केसरिया फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र। फिल्म ने मिक्स रिस्पांस दिया, ना ही ज्यादा अच्छा ना ही ज्यादा बुरा, लेकिन केसरिया हर जगह बज रहा था। सिंपल लिरिक्स और परफेक्ट मेलोडी के साथ इस गाने ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। अब बात करते हैं झूमे जो पठान फ्रॉम द मूवी पठान, जिसको 2023 में रिलीज किया गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन ये गाना सबकी फिटनेस प्लेलिस्ट और शादियों का मस्ट प्ले सॉन्ग बन गया। SRK का स्वैग और

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

फ्रॉम द मूवी ओके जानू और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर मैं मान। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं 90s के दौर की और आज के दौर की कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जिन कहानियों के हीरोज की एंट्री ऐसी रही जो कि आइकॉनिक साबित हुई। तो ऐसे स्टार्स की बात करूं 1995 में रिलीज हुई फिल्म करण अर्जुन, जहाँ पे SRK की एंट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया और इस फिल्म के बहुत ही फेमस डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे। डायलॉग फेमस होने के बाद जब SRK जिंदा होकर एंट्री लेते हैं तो पूरा थिएटर सीटी मार बन जाता है। हर किसी ने इस सीन को बहुत ज्यादा पसंद किया। फिर बात करते हैं अजय देवगन की फूल और कांटे। दो बाइक्स पे खड़े होकर एंट्री करने वाले पहले ऐसे स्टार बॉलीवुड में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा धमाका होगा। ये स्टंट आज भी अजय की पहचान माना जाता है। अब बात करते हैं खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की। अक्षय की एंट्री एक थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंस के साथ होती है जो उनका खिलाड़ी कुमार टाइटल ही बन जाता है। उनके एक्शन पैक्ड करियर का सॉलिड फाउंडेशन रही खिलाड़ी जो कि 1992 में रिलीज की गई। अब बात करते हैं 2000 के दौर की जब ऋतिक रोशन की एंट्री कहो ना प्यार है में होती है। स्लो मोशन में बीच के ऊपर शर्टलेस डांस, उसके बाद एक धमाकेदार फाइट सीन, इतना ज्यादा धमाल मचाया था इस कहानी ने और ऋतिक के किरदार के साथ डांस ने भी। इष्ट विष्ट के शाहिद कपूर की एक बहुत बेहतरीन कहानी रही। कॉलेज बॉय की चॉकलेटी एंट्री, डांस मूव्स और क्यूट स्माइल के साथ जेन जी और 90s के किड्स का नए एज क्रश बन जाना शाहिद कपूर के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर बात करते हैं जॉन अब्राहम की धूम। 2004 में इस कहानी को रिलीज किया गया और एक राइडर हाई स्पीड बाइक चेज में एंट्री लेते हैं जॉन अब्राहम और जब मास्क हटता है तो बूम, जॉन अब्राहम की एंट्री सबने बहुत ज्यादा पसंद किया और बॉलीवुड का सबसे कूल विलन बन गए थे जॉन अब्राहम। अब जाते आते यहाँ पे मैं एक नाम और लेना चाहूंगा, रणवीर सिंह। गोलियों की रास लीला 2013 में इस कहानी को रिलीज किया गया और धमाकेदार गन फायरिंग एंट्री और एनर्जी से भरी पर्सनालिटी, रणवीर का फुल ऑन पावर हाउस परफॉर्मर होना प्रूफ हो गया था इस कहानी में और इस कहानी की एंट्री के साथ। चलिए दोस्तों वैसे एक मैं नाम और ले ही देता हूँ, विकी कौशल का उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हाउस द जोश। ये डायलॉग बॉस इतना ज्यादा वायरल हुआ कि आज भी इस डायलॉग को लोग अपनी रील्स तक में यूज किया करते हैं। वैसे डायलॉग जब हाउस द जोश के साथ कमेंडो स्टाइल एंट्री हुई विकी कौशल की तो सुपरस्टार ट्रांसफॉर्मेशन रही उनके करियर की। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें चर्चाएं तो लेकर के आता ही रहूंगा, उससे पहले एक और खूब चर्चा।

मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कॉलिंग।

एक बार फिर से लौट आया हूँ मैं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। मैं मोनिका। और दोस्तों अगर देखिए बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड सिर्फ मूवीज एक्टर्स और डायलॉग्स के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि यहाँ मूवी के टाइटल्स भी कई बार इतने ज्यादा हटके होते हैं जिसे सुनकर लगता है कि भाई ये क्या था। तो चलिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही टाइटल्स के बारे में जहाँ सुनकर के आप हंसी से लोटपोट हो जाने वाले हैं और स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि भाई कुछ ज्यादा ही हटके नहीं होगा। यहाँ सबसे पहले बात करूँ 1971 में रिलीज की गई कहानी जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी पर टाइटल इतना अजीब था तो लोगों को लगा कि ये कोई साइंस फिक्शन मूवी तो नहीं होने वाली। आगे बात करते हैं बॉलीवुड के ऐसे एक और टाइटल के बारे में जो कि 1988 में कहानी को रिलीज किया गया जैसे कहानी का नाम था पाप को जलाकर राख कर दूंगा। एक प्रॉपर मसाला फिल्म जिसमें रिवेंज ड्रामा और एक्शन था और टाइटल इतना ज्यादा ड्रामेटिक था लग रहा था भाई यहाँ पे एक्शन के अलावा और कुछ होना ही नहीं वाला। और अब यहाँ बात करते हैं ऐसे एक और टाइटल के बारे में जहाँ लग रहा था कि भैया मूवी का कोई कनेक्शन ही नहीं है इस टाइटल से। टाइटल का नाम है मट्टू की बिजली का मंडोला जिसको 2013 में रिलीज किया गया। बॉलीवुड में कभी कभी मूवी का टाइटल ऐसा होता ना कि भैया हर कोई हैरान रह जाते हैं भाई है क्या मूवी में बताना क्या चाहते हो। और मूवी रिलीजिंग के दौरान लोगों को कहानी अच्छी भी लगती है लेकिन आखिर में हर कोई यही सोचता है कि भैया टाइटल का क्या कनेक्शन था इस कहानी से। और यही जाते जाते मैं एक कहानी का नाम और लेना चाहूंगा लाली की शादी में लड्डू दीवाना। 2017 में इस कहानी को रिलीज किया गया था एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें विवान शाह और अक्षा हसन नजर आए थे। और टाइटल की अगर बात की जाए तो भाई इतना था डिफरेंट टाइटल है इतना कुछ हटके टाइटल है जैसे कि रेडियो महारानी को हटके है और लोगों को लगा भैया टाइटल जैसा है कि कहानी भी इतनी ज्यादा घूमी फिरी तो नहीं होने वाली क्योंकि टाइटल से किसी को समझ नहीं आया कि भैया कहानी में एग्जैक्टली होने ही वाले। लेकिन जब कहानी को रिलीज किया गया लगा भैया कहानी बिल्कुल सीरियसली ट्रैक पर चल रही थी जो टाइटल था वो कुछ ज्यादा ही घुमा दिया गया। बाकी देखिए चलिए कभी डायलॉग्स ट्रेंडिंग में रहते हैं तो कभी गाने ट्रेंडिंग में रहते हैं यही कुछ ऐसे टाइटल्स हैं मूवी के जहां मूवी की कहानी से ज्यादा लोगों ने टाइटल के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें चर्चा लेकर के आता रहूंगा। सुबह सुना देता हूँ एक और बढ़िया सा गाना।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर किसी ट्रेलर ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज क्रिएट किया है तो वो है रामायण। 30 जुलाई को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड बिलीव मी इंटरनेट लिटरली पॉज हो गया था। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने स्केल के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सबसे पहली बात कर लेते हैं विजुअल्स की। VFX इतने ग्रैंड और पॉलिश्ड लग रहे हैं कि काफी लोग बोल रहे हैं फाइनली माइथोलॉजी इज गेटिंग द सिनेमैटिक ट्रीटमेंट इट डिजर्व्स। और हाँ, सबसे ज्यादा सरप्राइज दिया है रणबीर कपूर ने। ट्रेलर आने से पहले बहुत सारे लोगों का एक ही कंसर्न था, एनिमल के बाद क्या वो श्रीराम के रोल में एक्सेप्ट हो पाएंगे, लेकिन ट्रेलर के बाद काफी हद तक वो डाउट खत्म होता दिख रहा है। उनका काम, स्क्रीन प्रेजेंस और सटल एक्सप्रेशंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं साई पल्लवी। एस सीता बिल्कुल ग्रेसफुल, एलिगेंट और एफर्टलेस लग रही हैं। और अब बात आती है उस एंट्री की जिसका सबको था इंतजार, यश एस रावण। पावरफुल लुक, रॉयल ऑरा और सिर्फ कुछ ही सेकंड की प्रेजेंस में उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है। काफी लोग तो कह रहे हैं कि रावण का कैरेक्टर ऑलरेडी घूस पम्प्स दे रहा है। और हाँ, एक बात फैंस ने जरूर नोटिस की है, ट्रेलर में हनुमान जी का प्रॉपर ग्लिम्प्स दिखा ही नहीं और बस इसी वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई है। शायद मेकर्स ने वो बिगेस्ट मोमेंट फिल्म के लिए सेव कर रखे हो। ओवरऑल ट्रेलर को ऑडियंस ने जबरदस्त रिस्पांस दिया है और बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है दिवाली 2026 का। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।

जी ये गाना है फ्रॉम द मूवी कॉकटेल और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर मैं फिल्मी टॉनिक। यार दोस्तों देखिए आज हमने बॉलीवुड के पिटारे से बहुत सी बातें बहुत सी चर्चाएं करी कि कुछ ऐसे स्टार्स जिन्होंने छोटे पर्दे से शुरुआत करी लेकिन उसके बाद सिल्वर स्क्रीन पर ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई उन्हें एक नए प्रोजेक्ट में किसी नए किस्से कहानियों के साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहता है। वही बात करते हैं कुछ ऐसे स्टार्स जो कि सिल्वर स्क्रीन से तो गायब हो गए लेकिन एकदम से यानी कि अचानक से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंट्री बिल्कुल ही डिफरेंट किरदार के साथ तो लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया और ये किरदार उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी बन गया। और कुछ ऐसे स्टार्स की किस्से कहानियां जब उनकी एंट्री ने इतना बड़ा धमाल मचाया लोगों को लगा भैया ये एंट्री इतनी धांसू है कि फिल्म तो भैया सुपरहिट हो ही गई। और ऐसी और जो ना जाने कितनी सारी चर्चाएं हमने बॉलीवुड के गलियारे से पिटारे से की कि कौन कौन से स्टार्स हैं जो लोगों के दिलों पर हमेशा छाए रहे तो कभी हीरो बनकर तो कभी विलन का किरदार बनकर भी लोगों का अच्छा खासा प्यार बटोरा। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें ढेरों चर्चाएं फिल्मी गलियारे से आप सबके लिए लेकर के आता रहूंगा कि कौन कौन सी नई कहानियां जो है बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। कुछ ऐसे स्टार किड्स जो कि डेब्यू करने वाले हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तो कुछ सिल्वर स्क्रीन पर लेकिन ये सारी चर्चाएं मैं करूंगा आज नहीं आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम जगह करूंगा ढेरों बातें। तब तक सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके और जाते जाते ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।

0: लवर्स।
1: फ्राइडे आ ही गया, और वैसे सच सच बताना, फ्राइडे आते ही ना वीकेंड के प्लान से ज्यादा एक्साइटमेंट किस बात की होती है। मेरी तो एक ही विश होती है कि बस संडे को कोई मुझे लेट तक सोने दे। मतलब लोग बोलते हैं ना कि वीकेंड पे लॉन्ग ड्राइव, वीकेंड पे शॉपिंग, वीकेंड पे ब्रंच, और मैं वीकेंड पे ब्लैंकेट, तकिया और मस्त गहरी नींद। सीरियसली मुझे संडे को सबसे बेस्ट प्लान यही लगता है, सोना, उठना, फिर थोड़ा खाना और फिर सो जाना। वैसे आप लोग भी बताना कि आपके वीकेंड प्लान्स क्या होते हैं, कहीं घूमने वाले हो, फैमिली टाइम हो, या आप मेरे टीम में हो, खाली सोने का प्लान। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं द हैप्पी आवर्स सिर्फ 89.6 रेडियो महारानी पर। अगले दो घंटे फुल मस्ती होगी, जेन जी डिक्शनरी भी खुलेगी, इंटरनेट के मीम्स भी डिस्कस होंगे, बॉलीवुड की गर्मा गर्म अपडेट्स भी होंगी, और बीच बीच में बजेंगे आपके फेवरेट गाने। तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और चलिए फ्राइडे को थोड़ा और हैप्पी बनाते हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
2: So, you and Robbie, huh? What's up?
3: Whatever.
2: Hey, but where's Rohan?
3: I don't know, and I don't care. I hate him.
4: But I love you.

0: से स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

0: पीड़ा
1: yeah.
0: पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: yeah.

0: लवर्स।
1: अच्छा एक बात बताओ, कभी किसी ने आपको बोला है कि यार तू कितना गूफी है, और आप एक सेकंड के लिए सोचने लगे कि ये तारीफ कर रहा है या बेइज्जती? तो रिलैक्स गाइस, आजकल जेंजी डिक्शनरी में ना गूफी का मतलब होता है वो पर्सन जो थोड़ा फनी हो, थोड़ी पागलों वाली हरकत करता हो और बिना वजह लोगों को हंसा देता हो, जैसे कि मैं। मतलब जो रील बनाते बनाते खुद ही गिर जाए फिर उठकर बोले कि एक और टेक करते हैं यार, है ना, या जो सीरियस फोटो खिंचवाने जाए और लास्ट मोमेंट पर अजीब सा फेस बना दे। मुझे लगता है ना कि हर फ्रेंड सर्कल में एक गूफी फ्रेंड जरूर होता है, और अगर आप सोच रहे हो कि हमारे ग्रुप में कौन है तो एक बार जरा खुद को चेक कर लेना, कहीं आप ही वो पर्सन ना हो। और एक और सीक्रेट बात बताऊं, लाइफ में ना थोड़ा गूफी होना भी जरूरी है। हर वक्त मैच्योर बनने की एक्टिंग करते करते इंसान थक जाता है, कभी कभी बस खुल के हंस लेना और थोड़ी सी मस्ती कर लेना भी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। चलिए अब गाना एंजॉय कीजिए, और गाने के बाद मिलते हैं मीम चेक में, जहां बात होगी उस इंटरव्यू की जिसे देखकर मुझे भी ये लगा था कि ये मेरा ही वर्जन है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है।
0: डॉक्टर कॉलिंग।
2: सुनो सुनो सुनो, सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

आज सुबह ही मेरी चाय ढंग से खत्म भी नहीं हुई थी और मैं आदत से मजबूर तो हूँ ही। चाय पीते पीते मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया और रील स्क्रॉल करने लगी और पहली ही रील आई कि एक रिपोर्टर एक पर्सन से पूछ रही है कि आप खाली टाइम में क्या करते हो, और उस पर्सन ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया कि मैं तो सो जाता हूँ। और इस लाइन के बाद ही तुरंत मैंने बोला कि अरे ये तो मैं हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि मुझे संडे को सिर्फ सोना पसंद है। उसके बाद रिपोर्टर ने पूछा कि अच्छा फुल टाइम में क्या करते हो, उसने बोला कि नहा धोकर खा पी कर फिर सो जाता हूँ। और उसके बाद जब उसने पूछा कि अभी यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि अभी तो सो के उठा हूँ। बस भाई उसके बाद ना मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही प्रीमियम वर्जन है। अब सच बताना, हम सबकी लाइफ में ना एक ऐसा फेज जरूर आता है जहाँ ना हम कॉर्पोरेट लाइफ से थोड़ा ब्रेक मांगते हैं। और संडे को तो मम्मी वैसे ही बोलती हैं कि उठ जाओ और कितना सोओगे, तो हमें बस एक ही डायलॉग याद आता है कि बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसीलिए ये मीम हमें बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगी, क्योंकि इसमें कोई भी एक्टर नहीं था, क्योंकि इस रील में सबने खुद को ही इमेजिन किया। चलिए अब एक मस्त सा गाना सुनते हैं और गाने के बाद मिलते हैं 4 लोग क्या कहेंगे में। आज बात करेंगे उस लेजेंडरी इंसान की जिसे हम सब बचपन से जानते हैं, शर्मा जी का बेटा। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महा।

वेलकम बैक गाइज, यू आर लिसनिंग टू फेवरेट सेगमेंट सिनेमा कैप्सूल। मैं हूँ आरजे गीत और यहाँ मैं रिव्यूज नहीं देती बल्कि बताती हूँ कि वीकेंड का डेटा पैक इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मुसाफिर कैफे की, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है इन दिनों। अब ऑनेस्टली ओटीटी पर इतना अच्छा कॉन्टेंट आ रहा है, रिमोट से ज्यादा तो थम वर्कआउट कर लेता है, हाफ एन आवर सिर्फ स्क्रॉल करने में निकल जाता है और एंड में वही पुराना सिटकॉम ऑन। लेकिन मुसाफिर कैफे इज अ लिटिल डिफरेंट। सबसे पहले विक्रांत मेसी, ये बंदा भाई एक्टिंग नहीं करता, बस स्क्रीन पर आ जाता है और बाकी के इमोशंस ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। इसको ओवर एक्टिंग का पासवर्ड शायद आज तक मिला ही नहीं। और अच्छी बात ये है कि ये सीरीज अननेसेसरीली लाउड बनने की कोशिश नहीं करती, ना फोर्स्ड एक्शन, ना रैंडम ट्विस्ट, ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर सीन में चलता रहता है, बल्कि एवरीथिंग फील सिंपल ऑर्गेनिक। वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी काफी नेचुरल लग रही है, तीनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर बिल्कुल एफर्टलेस फील होती है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो स्लो कन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं, जो कॉफी पे 2 घंटे बैठ सकते हैं और जिन्हें हर 10 मिनट में एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हर एपिसोड के बाद बोलते हो बस ट्विस्ट कहाँ है यार, तो मे बी दिस वंस नॉट योर कप ऑफ कॉफी। लेकिन अगर मूड है समथिंग काम, फील गुड और जेन्युइनली वेल परफॉर्म देखने का, देन मुसाफिर कैफे डेफिनेटली डिजर्व अ चांस। मैं हूँ गीत और मिलते हैं नेक्स्ट सिनेमा कैप्सूल में, क्योंकि ओटीटी पर कंटेंट खत्म हो सकता है लेकिन भाई मेरी बातचीत खत्म नहीं होगी। तो वक्त है गाने का, गाना सुनकर आते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: बर्ड्स।
1: अच्छा एक बात बताओ, बचपन में ना मुझे लगा था शर्मा जी का बेटा शर्मा जी से ज्यादा मेरी मम्मी का फेवरेट बन गया है। मैं 10th क्लास में 85% लेकर आई थी और मम्मी ने तुरंत बोला कि अच्छे हैं, लेकिन शर्मा जी के बेटे के 95% आए थे। मैं संडे को थोड़ी देर एक्स्ट्रा सो गई तो शर्मा जी का बेटा सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई कर लेता है, और अगर मैं फोन लेकर बैठ जाऊं तो बस यही सुनने को मिलता है कि शर्मा जी का बेटा तो पूरे दिन फोन को हाथ भी नहीं लगाता, सिर्फ पढ़ाई करता है। मतलब सीरियसली मुझे बचपन में लगा था कि ये शर्मा जी का बेटा है या मेरा गूगल, कि मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके पास क्यों है भाई। फिर धीरे धीरे समझ आया कि प्रॉब्लम शर्मा जी का बेटा नहीं था, प्रॉब्लम कंपैरिजन थी। हम अपनी लाइफ की स्टोरी किसी और के रिपोर्ट कार्ड से कंपेयर करने लगते हैं, और कंपैरिजन की ना सबसे फनी बात पता है क्या है, जिस शर्मा जी के बेटे से हमें कंपेयर किया जाता है, हो सकता है उसके घर में उसकी कंपैरिजन किसी वर्मा जी की बेटी से हो रही हो। इसलिए आज अगर कोई बोले ना कि शर्मा जी के बेटे को देखो, तो प्यार से बोल देना कि देखूंगी, बिल्कुल देखूंगी, लेकिन पहले मुझे उसका एड्रेस भेज दो, बचपन से नाम सुन रही हूँ लेकिन आज तक मिल नहीं पाया मुझे। क्योंकि कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ता, बस अपनी खुशियाँ छोटी लगने लगती हैं। तो अपनी रेस है भाई, अपनी स्पीड से दौड़ना है ना। बाकी शर्मा जी के बेटे को शर्मा जी ही संभाल लेंगे। चलिए अब एक प्यारा सा गाना सुनते हैं, और गाने के बाद मिलते हैं द पॉपकॉर्न अपडेट में। गुड न्यूज उन लोगों के लिए जिन्होंने कॉकटेल 2 थिएटर्स में मिस कर दी थी। बताऊंगी क्या है इसका राज। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

दुनिया कई बार ना कई चीजों को सुनकर देखकर ऐसे लगता है कि ये तो कभी नहीं पता था ये कैसे हुआ। तो बस ऐसी बातें करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ और टाइम हो गया इंटरेस्टिंग फैक्ट का। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आज मेरे पिटारे में आखिर ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कई बार ना हमें ऐसी चीजें पता चलती है जिन्हें सुनने के बाद ना सीधा ये निकलता है सही में ऐसा भी हो सकता है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपको पता है ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। अब आपको आपके एक्स की याद आ गई होगी क्योंकि वो आपका जो एक दिल था वो भी तोड़कर चली गई ना। कोई बात नहीं, आज अपना दिल साइड रखकर ऑक्टोपस के 3 दिल की बात सुन लेते हैं। अगर मैं 3 दिल की बात करूँ तो तीनों दिल का काम है। 2 दिल ऑक्टोपस के गिल्स तक खून पहुंचाते हैं और जो तीसरा दिल है वो पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। तो ये जो तीनों दिल है ना वो अपना काम बराबर करता है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब ऑक्टोपस तैरता है ना तो उसका जो मेन दिल होता है वो कुछ देर के लिए धड़कना बंद कर देता है और यही रीजन है कि ऑक्टोपस बहुत देर तक तैरना पसंद नहीं करता। नेचर के पास वाकई कमाल का सरप्राइज, और कई बार लगता है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट भी करती है। तो जरूर कहते हैं, अब आप ये सोचो अगर ऑक्टोपस की गर्लफ्रेंड उसका दिल तोड़ भी देना तो फिर भी उसके पास 2 दिल है तो वो 2 दिल से काम ला लेगा। लेकिन आपके पास एक ही दिल है तो अपने दिल का ख्याल जरूर रखेगा। और पता है ना हार्ट हेल्थ का ख्याल कैसे रखता है, तो बस हो जाइए शुरू और साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक।

0: पर्स।
1: एक कन्फेशन करना है, हम में से ना बहुत लोग थिएटर में फिल्म देखने का प्लान तो बना लेते हैं, फिर बोलते हैं कि यार OTT पे आ जाए ना, फिर देख लेंगे। तो गुड न्यूज है उन सभी के लिए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकटेल 2 14 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। मतलब अगर आप थिएटर्स में मिस कर गए थे तो इंडिपेंडेंस डे लॉन्ग वीकेंड का एंटरटेनमेंट आपके पास खुद चलकर आ गया है। और इस बार फिल्म में नजर आ रहे हैं शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंधाना। और इस सीक्वल को भी डायरेक्ट किया है होमी अडजानिया ने, जिन्होंने 2012 वाली ओरिजिनल कॉकटेल भी डायरेक्ट की थी। यानी नई फेसेस, नया लव ट्रायंगल, लेकिन कॉकटेल वाली रिलेशनशिप और दोस्ती वाली फील को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जो हर फिल्म के लिए बोलते हैं कि OTT पे आएगी तब देखेंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लगता है इस बार आपकी विश पूरी होने वाली है। चलिए अब एक जबरदस्त गाने एंजॉय कीजिए और गाने के बाद मिलते हैं स्टाइल स्टूडियो में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पूरे दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

गर्ल्स एक बात बताओ कि फैशन का मतलब क्या है? कंफर्ट को सेक्रिफाइस करना या कॉन्फिडेंस कैरी करना? क्योंकि ऑनेस्टली अगर पूरा दिन आउटफिट ही एडजस्ट करना पड़ रहा है तो फैशन जीत गया है और हम हार चुके हैं। और आज ही मैंने एक पोस्ट देखी जो उसमें श्रद्धा कपूर एक एड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोल रही थी कि सुंदर दिखने के लिए ना अनकंफर्टेबल होना जरूरी नहीं है। और पता है ये बात मुझे सच में हिट कर गई, क्योंकि कितनी बार हम सिर्फ ट्रेंड के चक्कर में वो पहन लेते हैं जो हमें सूट ही नहीं करता। फिर पूरा दिन या स्लीव्स ठीक करो, हाँ हील संभालो, या आउटफिट क्रीज हो गया। अरे भाई, आउटफिट पहनना है या प्रोजेक्ट हैंडल करना है? मेरा मानना ये है कि फैशन का असली रूल सिंपल है, आप कपड़े कैरी मत करो, कपड़े आपको कैरी करें। ट्रेंड आएंगे ट्रेंड जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को मिरर में देख के बोलो कि हाँ यार आज तो मैं अच्छी लग रही हूँ, बस वही तो बेस्ट आउटफिट है। चलिए अब स्टाइल की बातें बहुत हो गई, अब टाइम हो चला है फरीदाबाद की गलियों में निकलने का, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: मेरा नाम डॉक्टर आनंद है, आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सर्वोदय सेक्टर 8। जैसे कि आपने सही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इस मदर्स मिल्क यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग कि माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में वो पर्याप्त मात्रा में हैं। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है, और जिस क्वांटिटी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 मंथ्स में, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन होता है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ

0: कुछ हटके।
1: अरे थारी किस्मत में गुलाम लिखेड़ो है। रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिले करे।

0: बोला माझा किंग, ओ माझे किंग।
1: मी
0: घरी नाही जायचं का? मी तुझी गर्ल, जाने जी गर्ल, मी चम्मच छलो, तू माझा किंग किंग किंग किंग।
2: एक बात बताऊं, मुझे ना फेस्टिवल्स की एक बात बहुत अच्छी लगती है। फेस्टिवल चाहे किसी भी नाम का हो, घर में ना एकदम अलग ही एक्साइटमेंट और वाइब देखने को मिलती है। एक तरफ मम्मी बोल रही होती हैं कि अलमारी से सूट निकाल, साड़ी निकाल, और दूसरी तरफ मैं परेशान रहती हूँ कि एक मिनट यार, इसके मैचिंग की ज्वेलरी तो मिल जाए पहले। वैसे अगर आप भी वीकेंड पे घर बैठने का प्लान बना रहे हो तो उससे पहले एक अपडेट सुन लो। कल सेक्टर 89 में जश्न तीज सेलिब्रेट किया जा रहा है, एग्जीबिशन भी है। तो अगर फेस्टिव शॉपिंग का मूड हो या बस तीज वाली वाइब फील करनी हो तो एक बार आप वहाँ जा सकते हो। और वैसे मुझे ना एग्जीबिशन इसलिए पसंद है कि हम जाते इस माइंड से हैं कि बस देखने जा रहे हैं, लेकिन वापस आते टाइम एक दो बैग्स कैरी कर ही लेते हैं। चलिए अभी गाना सुनते हैं और उसके बाद मिलते हैं आज के शटर डाउन के साथ। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर किसी ट्रेलर ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज क्रिएट किया है तो वो है रामायण। 30 जुलाई को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड बिलीव मी इंटरनेट लिटरली पॉज हो गया था। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इसने स्केल के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सबसे पहली बात कर लेते हैं विजुअल्स की। VFX इतने ग्रैंड और पॉलिश्ड लग रहे हैं कि काफी लोग बोल रहे हैं फाइनली माइथोलॉजी इज गेटिंग द सिनेमैटिक ट्रीटमेंट इट डिजर्व्स। और हाँ, सबसे ज्यादा सरप्राइज दिया है रणबीर कपूर ने। ट्रेलर आने से पहले बहुत सारे लोगों का एक ही कंसर्न था, एनिमल के बाद क्या वो श्रीराम के रोल में एक्सेप्ट हो पाएंगे, लेकिन ट्रेलर के बाद काफी हद तक वो डाउट खत्म होता दिख रहा है। उनका काम, स्क्रीन प्रेजेंस और सटल एक्सप्रेशंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं साई पल्लवी एस सीता। बिल्कुल ग्रेसफुल, एलिगेंट और एफर्टलेस लग रही हैं। और अब बात आती है उस एंट्री की जिसका सबको था इंतजार, यश एस रावण। पावरफुल लुक, रॉयल ऑरा और सिर्फ कुछ ही सेकंड की प्रेजेंस में उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है। काफी लोग तो कह रहे हैं कि रावण का कैरेक्टर ऑलरेडी घूस पम्प दे रहा है। और हाँ, एक बात फैंस ने जरूर नोटिस की है, ट्रेलर में हनुमान जी का प्रॉपर ग्लिम्स दिखा ही नहीं और बस इसी वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई है। शायद मेकर्स ने वो बिगेस्ट मोमेंट फिल्म के लिए सेव कर रखे हो। ओवरऑल ट्रेलर को ऑडियंस ने जबरदस्त रिस्पांस दिया है और बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है दिवाली 2026 का। मैं हूँ गीत और ये था

0: watch more, log on to www.erosnow.com. Happy hours.
1: चलो जाने से पहले एक कन्फेशन करना चाहती हूँ। हम कभी ना कभी किसी ना किसी की बातों की ना अनपेड एम्प्लॉय बन जाते हैं। कोई कुछ बोलता है और ओवर टाइम हमारा दिमाग करने लगता है। और अभी ही मैंने एक लाइन पढ़ी कि दूसरों की बातें सुनना बंद कर दो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। और पता है, इसी लाइन से मुझे ये चीज समझ में आई कि हमारी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उसने हमें ऐसा क्यों बोला। प्रॉब्लम ये है कि हमने उसकी बात को अपने दिल पे इतना ले लिया कि हम खुद ही अपना मूड खराब कर बैठे हैं। लेकिन सच बताऊं, जिंदगी उसी दिन से इजी लगने लगेगी जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि हर किसी को खुश रखना आपकी जॉब प्रोफाइल में नहीं है। तो इसीलिए दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करो और खुद की खुशियों पे ध्यान दो। मैं हूँ आजे पलक, शो चल रहा था दी हैप्पी आवर्स। मिलते हैं मंडे, तब तक मस्त रहिए, हंसते रहिए और याद रखिए, जो लोग आपको समझते हैं ना, उन्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझते उनके लिए एक्सप्लेनेशन कभी काफी नहीं होती। बाय बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। रेडियो महारानी 89.6 से आरजे पलक साइनिंग ऑफ।
2: नेवर मिस एन अपडेट, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

0: पतंजलि।
1: कई बार ना कई चीजों को सुनकर देखकर ऐसे लगता है कि ये तो कभी नहीं पता था ये कैसे हुआ। तो बस ऐसे ही बातें करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ और टाइम हो गया इंटरेस्टिंग फैक्ट का। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आज मेरे पिटारे में आखिर ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कई बार ना हमें ऐसी चीजें पता चलती है जिन्हें सुनने के बाद ना सीधा ये निकलता है सही में ऐसा भी हो सकता है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपको पता है ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। अब आपको आपके एक्स की याद आ गई होगी क्योंकि वो आपका जो 1 दिल था वो भी तोड़कर चली गई ना। कोई बात नहीं, आज अपना दिल साइड रखकर ऑक्टोपस के 3 दिल की बात सुन लेते हैं। अगर मैं 3 दिल की बात करूँ तो 3 दिल का काम है। 2 दिल ऑक्टोपस के गिल्स तक खून पहुंचाते हैं और जो 3रा दिल है वो पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। तो ये जो 3 दिल है ना वो अपना काम बराबर करता है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब ऑक्टोपस तैरता है ना तो उसका जो मेन दिल होता है वो कुछ देर के लिए धड़कना बंद कर देता है और यही रीजन है कि ऑक्टोपस बहुत देर तक तैरना पसंद नहीं करता। नेचर के पास वाकई कमाल का सरप्राइज है और कई बार लगता है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट भी करती है। तो जरूर कहते हैं, अब आप ये सोचो अगर ऑक्टोपस की गर्लफ्रेंड उसका दिल तोड़ भी देना तो फिर भी उसके पास 2 दिल है तो वो 2 दिल से काम चला लेगा। लेकिन आपके पास 1 ही दिल है तो अपने दिल का ख्याल जरूर रखेगा। और पता है ना हार्ट हेल्थ का ख्याल कैसे रखता है, तो बस हो जाइए शुरू और साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक। Said you must have plenty bones.

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
6: झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

देख, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ कर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6
3: एफएम। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

0: हाँ तो फरीदाबाद वालों, कैसे हो आप सब? सुबह से भीग रहे हो या फिर भीगने वाले हो या फिर भीग चुके थे? क्योंकि सुबह सुबह जैसे ही मैं उठा तो मैं तो भीग गया था।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: दोस्तों गाइस, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ आरजे गौरव आप सभी के साथ। एंड आज का दिन कुछ खास था। कुछ बच्चे आए हमारे रेडियो में और उसके साथ आई बरसात, एंड बरसात के साथ आई बहुत सारी दिक्कतें। अंडरपास फुल हो गए हैं पानी से, ये आप सभी को पता है। एंड दूसरी चीज़, सड़कें भी फुल हो गई हैं गाड़ियों से। कई कई जगह पर वाटर लॉगिंग हो गई है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है। ट्यूसडे से ये बारिश शुरू हुई थी। वेंसडे, कल अगर हम लोग बात करें कल की, तो कल थोड़ी बहुत थी, बट आज का दिन इट वॉज अमेजिंग। बारिश के मामले में बोले तो अमेजिंग था, बट लोगों को जब दिक्कत होती है ना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं होता। देखो बारिश देखने में कितनी अच्छी लगती है, कितनी प्यारा मौसम हो जाता है, चाय पकौड़े साथ में, जलेबी हो जाए, ब्रेड पकौड़ा हो जाए, मतलब ये सब चीज़ें खाने की है। बट फिर उसके बाद जब हमें मन करता है कि यहाँ से कहीं निकलते हैं, तब होती है असली दिक्कतें शुरू। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोशिश रहेगी कि कोशिश कैसे कर सकते हैं हम लोग, बारिश तो नहीं रोक सकते हैं। कोशिश ये रहेगी कि अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिएगा। वैसे अभी मौसम विभाग का कहना है कि अब बस आज तक की थी ये बारिश, अब कल परसों आप लोगों को सुकून मिल जाएगा। और वैसे भी आज तो फ्राइडे है ब्रो, तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं। दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो मेरा एक सिंपल सा नंबर है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए गाने चला रहा हूँ, मगर वापस आकर बात करते हैं पहाड़ों की, क्योंकि पहाड़ों पर घूमने मत जाना।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

वो भी हसी थी, शाम भी हसीन है, मगर हसीन वादियां पहाड़ों पर है, लेकिन किस्मत अभी अच्छी नहीं है क्योंकि पहाड़ों पर जाना बिल्कुल सही नहीं है इस टाइम। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, रुको जरा समझ आ जाएगा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव आप सभी का स्वागत करता है रेडियो महारानी 89.6 पर। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चार धाम यात्रा खत्म नहीं हुई, बंद हो चुकी है। देखो खत्म होती है अभी, खत्म तो कभी खैर होगी नहीं, बट कहते ना उसे कि स्थगित कर दी गई है कुछ दिनों के लिए और बंद हो जाती है अक्टूबर के बाद। तो अभी आप लोगों को बता दूं, अभी फिलहाल के लिए कुछ दिन के लिए स्थगित की गई है। कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव है। हरिद्वार एंड ऋषिकेश में बहुत सारे घाटों तक पानी आ गया है, बहुत ज़्यादा उफान पर है गंगा मैया। और इसी के साथ साथ आप सभी को बताऊँ, कांवड़ यात्रा भी चल रही है। अब मैं पहाड़ों पर जाने से मना क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में बात करते हैं। देखो 15 अगस्त आ रहा, सभी को पता है छुट्टियां पड़ेगी 15 अगस्त को हम सबकी, है ना। बस इस बार सैटरडे है, सैटरडे की छुट्टी आप लोगों की बर्बाद गई। खैर काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि फ्राइडे की छुट्टी ले लेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन घूमने चले जाते हैं। वो क्या करेंगे, थर्सडे नाइट निकलेंगे, फ्राइडे एंजॉय करा, सैटरडे एंजॉय करा, संडे की सुबह सुबह वहाँ से वापस आ जाएंगे। बट अभी मैं पहाड़ों पर जाने से लिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि बारिश यूं ही चलती रहेगी, और अगर बारिश ऐसे ही चलती रहेगी तो इट्स नॉट सेफ टू गो ऑन पहाड़। और इसी के साथ साथ मैं एक बात बोलूँ कि आप लोग तो पहाड़ पर घूमने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो पहाड़ ही नीचे आ जाए। तो लैंडस्लाइड्स के खतरे बढ़ चुके हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि चालू है, तो आप लोग इन सब चीज़ों से बच के रहिए। और अभी मैं इतना बोलना चाहूँगा, देखो मौसम विभाग का यही कहना है कि बारिश अभी पहाड़ों पर उत्तराखंड और हिमाचल में बेसिकली अभी वो चलती रहेगी। तो आप लोग इसके बारे में ज़रा रिसर्च करके जाइएगा अगर कहीं भी घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। वापस आकर बात करते हैं हनी ट्रैप की, क्योंकि आजकल बहुत सारे नौजवानों को और बहुत सारे लोगों को साइबर क्राइम, साइबर क्रिमिनल्स बोलूँगा बेसिकली, साइबर क्रिमिनल्स हनी ट्रैप में फंसा रहे हैं। कैसे करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी

0: इस्तेमाल लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
1: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
0: अरे एक ग्लास तो पीती जाए, सुन।

0: क्या आप लोगों को मालूम है, एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। साइबर क्रिमिनल्स स्कैम को एक्टिवेट करके बैठे हुए हैं और किसी भी समय आप लोगों में से किसी भी एक को हनी ट्रैप में फंसा सकते हैं। नहीं नहीं, बेसिकली मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, और इन्फॉर्म करना तो मेरा काम है ना, है कि नहीं।
1: रेडियो का गौरव। आरजे गो।

0: बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड अभी मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि देखो, हनी ट्रैप क्या होता है ये? हनी और ट्रैप बेसिकली शहद का एक जाल नहीं है, ये है सारे उन लड़कों के लिए जो बिल्कुल बेचैन होकर बैठे नहीं रहते सोशल मीडिया पर कि भाई हम किसी से बात करनी है, हमें अपोजिट जेंडर से नहीं करनी आप लोगों ने ये सब हरकतें, क्योंकि आप लोगों की इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स आपके साथ ठगी कर सकते हैं। आपको एक अननोन वीडियो कॉल आएगा, हो सकता है इंस्टाग्राम पर आए, हो सकता है आपके फेसबुक पर आए, हो सकता है आपके व्हाट्सएप पर आए, तो अननोन वीडियो कॉल आएगा। जब भी अननोन वीडियो कॉल आती है आपको उठाना बिल्कुल भी नहीं है, अगर गलती से उठा भी लिया तो अपने कैमरे के आगे हाथ रख दीजिए, क्योंकि वहाँ पर वो क्या करेंगे, वो करेंगे ये के सामने से आपको कुछ ऑब्सीन चीज़ें दिखाई जाएगी और फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपकी शक्ल कैद हो गई, अब हम इसको यूट्यूब पर डाल देंगे, इंस्टाग्राम पर डाल देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे, सब कुछ। तो आप उनको बस ये बोलना बेटा डाल दे, क्योंकि वो नहीं डालने वाले, अगर उन्होंने डाल दिया तो उनका आईपी एड्रेस ट्रैक हो सकता है, उन किस डिवाइस से डाल रहे हैं वो चीज़ ट्रैक हो सकती है, तो वो ये गलती कभी नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहले आप लोगों को साइबर सेल में इन्फॉर्म करना है। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, ऐसे और भी टिप्स लेकर आते रहूंगा। फिलहाल आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, गाने का नाम है वशीकरण।
1: I'm a pussy boy. Sorry.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: फरीदाबाद में एक चीज बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और उसको कोई नहीं रोक पा रहा।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: नहीं, रेडियो का गौरव बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, अभी सिर्फ शो बढ़ रहा है मेरा आगे। बट जो चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है वो है आवारा पशु। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के आसपास या फिर मेन हाईवे पे, इवन मैंने देखा है सांड घूम रहे हैं, मैंने देखा है आवारा गायें घूम रही हैं, मैंने देखा है कुत्ते घूम रहे हैं। तो इनके ऊपर कुछ हो नहीं सकता क्या? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? क्या इनके ओनर्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? गायें ऐसे ही तो सड़क पर आ नहीं गई है। लोग क्या करते हैं, आप लोगों को अच्छे से मालूम है, दूध निकालते हैं, जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको फिर सड़क किनारे छोड़ आते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो काफ़ी बार लोग ऐसा भी करते हैं कि उनको कूड़े के ढेर के पास छोड़ आते हैं और फिर वो वहीं पर कूड़ा खाती हैं, एंड काफ़ी बार उनके प्लेट पेट में प्लास्टिक फंसने की वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। तो आवारा पशु का जो ये किस्सा है ना, जो ये प्रॉब्लम है, ये फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मुझे ऐसा लगता है ये बारिश के बाद आधी सड़क पर तो कूड़ा हो जाता है, आधी सड़क पर पानी हो जाता है, फिर उसके बाद आधी सड़क जो बचती है वहाँ पर आवारा पशु आ जाते हैं और फिर सड़क पर गाड़ी निकलने की भी जगह नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर कोई भी हायर ऑफिशियल मुझे सुन रहा है तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पर कार्यवाही कीजिए और जनता को इस चीज़ से मुक्त कराइए, इस प्रॉब्लम से मुक्त कराइए, बस यही कहना चाहूँगा। और अगर आपके घर के आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो MCF पे कंप्लेंट ज़रूर कीजिएगा। चुप नहीं बैठना, कंप्लेंट करनी है। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर इस मौसम को देखते हुए आप सभी के लिए ये

0: दिन में बकवास है।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल करती है।
0: झक्का पंगा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जिन मनुष्यों को दानों से बचा रहा है
5: मैं धूम्रपान का आदि हूँ, भोले को भांग चढ़ाता हूँ,

0: हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। सब छोड़ के सारे बुरे कर्म लो, मानवता पर चलता हूँ। क्यों इंतजार करे हम सब श्री कृष्ण के अवतार का, सब मिलकर हम निर्माण करे नव सतयुग से समाज का, जहाँ पशु को पूजा जाता हो और मांस कोई ना खाता हो, हर मानव में मानवता हो, ना मानवता दिखावा हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

जितना अच्छा मौसम था ना आज पूरे दिन भर का, उतना ही अच्छा ये गाना भी था। जरा जरा बहकता है महकता है, जो भी है, गाना अल्टीमेट था। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। स्वागत है आप सभी का, रेडियो महारानी, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड देखो, अभी पता है मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, क्या चीज वायरल है, बट क्या चीज वायरल है ये क्वेश्चन हो जाता है। मगर इसके अलावा मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि क्या आप वायरल होना चाहते हैं, तो इसके ऊपर ना मैंने एक वीडियो देखी एंड दैट वाज अमेजिंग। लाइक वो वीडियो वायरल थी इसलिए मुझे पता लगा। एंड फिर मैंने सोचा कि देखो, जो हम लोग फरीदाबाद वाले हैं, हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग वहाँ की वीडियो बना दें, लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि ये वीडियोज वायरल होती है। अगर आप लोग वीडियो बनाओगे कि फरीदाबाद में आपको अगर आप 25,000 रुपये सैलरी में काम कर रहे हो, तो आप अकेले रह सकते हो, बहुत आसानी से रह सकते हो। आपको 12,000 रुपये में रूम मिल जाएगा, फिर 15,000 रुपये तक का आपका, मतलब टोटल आपका 15,000 से 20,000 रुपये में गुजारा हो जाएगा एक महीने का। 5,000 या फिर मैं कहूँ 2,000 रुपये तो बची जाएंगे आपकी जेब में, जो कि सेविंग्स के तौर पर। और ये एक इंसान की बात करो, 25,000 रुपये। तो ऐसे ही कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर आप लोग वीडियोज़ लगातार बना सकते हो। और जैसे कि आप किसी मॉल में गए हैं, आपने मॉल में एक चीज़ का रेट पता किया, आपने पता किया केले कैसे मिल रहे हैं, तो मॉल में केले किलो के हिसाब से मिलेंगे आपको। वहीं पर अगर सड़क किनारे जाएंगे तो केले दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। ऐसे टाइप की आप लोग वीडियोज़ बनाना शुरू कीजिए, मेरी गारंटी है वायरल ज़रूर जाएगी। और अगर आप फरीदाबाद से कहीं बाहर जाते हैं तो एक नॉर्मल सी चीज़ का रेट पता करके जाइए फरीदाबाद में। जैसे कि हम लोग ऑटो में बैठते हैं, 20 रुपये सवारी, हल्की हो या भारी। दिल्ली में जाएंगे, वहीं पर आपको 20 रुपये तो नहीं, 100 रुपये तक तो देने पड़ जाते हैं। तो इसके बारे में ज़रा आप लोग सोचिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए ख्याल है इस गाने का नाम, तलविंदर की आवाज़ में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड बंडा आप सभी के साथ।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करूं यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: Yo boys, I am singing song. Soup song.

यो गाइस, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है और वक्त हो चुका है नाइटमेयर का। नाइटमेयर मींस नॉट बुरे सपने नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, मैं सपनों को डिकोड कर रहे हैं यहाँ पर और हम लोग आप लोगों के साथ सारे सपनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो सपने में क्या होता है, सपने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट आज मैं जिस सपने की बात करने वाला हूँ वो है, सपने में कभी आप लोगों ने मछली देखी है? क्योंकि मैंने कल ही देखी, कल मीन्स कल रात को और आज सुबह बेसिकली देखी मैंने सपने में। और इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ खुशखबरी आने वाली है या फिर फाइनेंशियल गेन होने वाला है। तो क्या मेरे पास फाइनेंशियल गेन होने वाला है? पैसा ही पैसा होगा। चलिए खैर बता दूँ आपको, शुभ संकेत माना जाता है मछली का दिखना, जैसे तैरती हुई मछली है, रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, मछली पकड़ रहे हो अगर आप लोग, इसका मतलब है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और अगर मछली खाते हुए देख रहे हो तो फिर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ कुछ ना बैड साइंस भी होते हैं सपनों के, जैसे कि अगर आप मछली देख रहे हो और आपने देखा मरी हुई मछली है, तो गंदे पानी में मरी हुई मछली का मतलब है कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। या फिर अगर तड़पती हुई मछली देख रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि परेशानी आने वाली है, तो उसकी चेतावनी है। तो सपने ना सिर्फ एक सपना नहीं होता, वो बहुत कुछ होता है, वो बहुत कुछ बताता है, जीवन में आने वाली चीज़ों के बारे में संकेत भी देता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने जो सपना देखा होता है वो असलियत में हो जाती है चीज़ें। अब देखो आपने सपने में देखा कि आप उड़ रहे हो, वो तो असलियत में नहीं होगा, बट हो सकता है आप प्लेन में बैठ के कहीं और जाने वाले हो, क्या पता आप लोगों की विदेश यात्रा के भोग लग रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है एनीथिंग। तो सपने का कोई मतलब होता है और हम लोग इस टाइम हर रोज सपनों को डिकोड करते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, वापस आकर थोड़ा और भी बातें करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

नहीं ब्रो, वो है किंग खान यानी कि शाहरुख खान। और शाहरुख खान बन चुके हैं दुनिया के नंबर वन। विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, रणवीर सिंह को पीछे छोड़ दिया। ब्रांड वैल्यू के मामले में मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ब्रांड वैल्यू क्या होती है कि इनके नाम से कुछ ब्रांड चल रहा है। मैं बता दूँ आपको, 17.80 करोड़ मान लो, इतना इनकी ब्रांड वैल्यू है। ये रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं डॉलर्स में बात कर रहा हूँ। 17.80 करोड़ डॉलर्स ये इनकी ब्रांड वैल्यू है। सेकेंड नंबर पर आते हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू है 16 करोड़ रुपए, और 16 करोड़ रुपए नहीं, माफ कीजिए, डॉलर। और वहीं पर विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो वो तीसरे नंबर पर आते हैं, और उनकी है 15 करोड़ 80 लाख डॉलर। सोचो इतनी ज़्यादा बड़ी ब्रांड वैल्यू है, मतलब इनका चेहरा वगैरह यार, बेसिकली अगर ये कहीं पर भी जाएंगे, सुबह सुबह एक बिस्लरी की बोतल उठा के पी लेंगे ना, तो फिर सोच लो बिस्लरी के स्टॉक्स ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो हम लोगों को भी अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनानी चाहिए। हर इंसान एक ब्रांड है, एक ब्रांड कैरी कर रहा है, एक बिजनेस है, उसको अपनी ब्रांड लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो आप लोग भी इसके बारे में ज़रा सोचिए। अब वापस आकर बॉलीवुड के बारे में थोड़ी सी और अपडेट होगी, थोड़ी सी और गपशप होंगी, और अगर आप भी कुछ बातें करना चाहते हैं तो नंबर है हमारा सिंपल सा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती रहा।

एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं। एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है। मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन सम

मार्ग में ज्ञान संसार कना पर बुद्धि को एकांत करा। मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा। मैं शून्य बना, मैं शांत बना, डिवोइस मैं देवांश बना। मैं लिखता गया अब कोई लगाम विचार पे ना।

ज्ञान संसार गना पर बुद्धि को एकांत करा। मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा। मैं शून्य बना, मैं शांत बना, डिवोइस मैं देवांश बना। मैं लिखता गया अब कोई लगाम विचार पे ना।

वाले कुछ महीनों में कौन कौन सी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो कि पर्दों पर आने वाली है, जो कि रिलीज होने वाली है और वो बम्पर कमाई कर जाएगी, जस्ट लाइक बॉर्डर 2, जस्ट लाइक धुरंधर 2। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल, रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। और अभी मैं जो बात बोल रहा हूँ वो ये है कि बॉक्स ऑफिस पर अगला धुरंधर कौन बनेगा। टॉक्सिक मूवी आने वाली है, टॉक्सिक में है सुपरस्टार यश, और फिर उसके अलावा मूवी आने वाली है रामायण। रामायण में मल्टी स्टारर मूवी है ये। रणबीर कपूर जिनको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं ये तो अभी वक्त बताएगा, क्योंकि एनिमल में जो एक किरदार निभाया था इन्होंने, अब उससे बिल्कुल डिफरेंट किरदार है। मुझे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा कि रणबीर कपूर ही है। खैर, अभी जो फिल्मों की बात कर रहा हूँ तो उसमें दृश्यम पार्ट 3 भी है, और दृश्यम पार्ट 3 में क्या होने वाला है जरा सोचिए इसके बारे में। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दृश्यम के लिए। और इसी के साथ साथ बता दूँ आपको, बॉक्स ऑफिस पर जो अगला धुरंधर बन सकता है वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टॉक्सिक हो सकती है या फिर बंटवारा 1947 भी हो सकती है, क्योंकि इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। मगर इन सब के बाद बिल्कुल दिसंबर में क्रिसमस पे क्या होने वाला है। क्रिसमस आप लोगों को लग रहा हो ना बहुत दूर है, नहीं है दूर, अगस्त भी अभी तक दूर लग रहा था, अब देखो कितनी जल्दी अगस्त आ गया। खैर, क्रिसमस पे आने वाली है फिल्म किंग खान की, किंग यानी कि शाहरुख खान की मूवी आने वाली है किंग, और उसके लिए भी बहुत सारे उनके जो फैन है वो वेट कर रहे हैं। और इसके साथ डूम्सडे आने वाली है इसी साल दिसंबर में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एवेंजर्स डूम्सडे ओवरशैडो कर जाएगी किंग को। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। नंबर है जी हमारा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर एक गाना चला रहा हूँ और हर्ष लिखारी की आवाज में है ये गाना बेबे बापू। सुनिए इस गाने को, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक यूआई का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

अब एक्टिव प्रोफेशनल्स है और कहा जा रहा है कि अगले साल तक इसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी 45 से 50 लाख तक, मतलब 45 से 50 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स हमें चाहिए होंगे AI यूज़ करने के लिए। सोचिए इसके बारे में, जॉब्स बढ़ने वाली है, तो आप लोग भी अगर AI फील्ड में या फिर मैं बोलूँगा टेक्नोलॉजी फील्ड में है, IT सेक्टर में है, तो आप लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिए। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि AI हर जगह काम आ रहा है, तो AI को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए और उसके बारे में सीखिए, नए नए चैलेंजेस लीजिए अपनी लाइफ में। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। मैं हूँ RJ गौरव, आप सभी के साथ, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम HR 896 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। हाँ भूला मैं जहाँ मैं मस्ती में झूम, सुनिए ओरिजिनल आवाज में। हाँ भूला मैं।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

0: बकवास है।
1: मुझे एक चीज तो जरूर बोलनी चाहिए कि आज का मौसम इज टोटली ऑसम, बट एक दिक्कत है कि ऑसम हो जाता है जब मौसम, तो फिर सड़कों पर पानी जमा हो जाता है।
2: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आरजे गौरव आप सभी का स्वागत करता है। जहां पर 50-60% चांसेस थे आज बारिश के, वो बढ़ गए 70% हो गए, 80% हो गए। और आपको पता है क्या, सुबह से यही दिखा रहा था कि अब और बारिश नहीं होगी, अब और बारिश नहीं होगी, अब और बारिश होगी ही नहीं, बट वो होती चली गई। एंड अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो, मुझे रोजाना सुनते हो, तो शायद आप लोगों को याद होगा कि सोमवार की शाम को मैंने बोला था कि 7 तारीख तक अब बारिश एक्सपेक्टेड है। ट्यूसडे से शुरू हुई, आज फ्राइडे है ब्रो, और फ्राइडे को भी बारिश चल ही रही है। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब ट्यूसडे की शाम को शुरू हुई थी, वेंसडे को हल्की फुल्की होती रही और फिर उसके बाद आज भी हो रही है। और मुझे तो पता नहीं चल रहा है इतनी तेज तेज हफ्ते बीत कहाँ रहे हैं। खैर, अगर आने वाले दिन की बात करें तो आने वाले दिनों में आप लोगों को थोड़ी बहुत गर्मी देखने को मिलने वाली, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री तक पहुँच जाएगा। बट अगले वीक भी एक दो दिन बारिश देखने को मिलेगी। फिर अगले सैटरडे क्या है, 15th of August, इंडिपेंडेंस डे, और इंडिपेंडेंस डे वाले दिन अगर बारिश हो गई तो फिर सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। खैर, कल भी मैंने ये बात बोली थी कि पतंगों को अगर उड़ा रहे हो तो मांझा इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है मांझे से। और अगर आप लोग बाइक वाइक से चल रहे हैं, बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि मांझा बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए ये गाना ला रहे।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: थैंक यू गॉड वॉज द सॉन्ग, बट अब हम लोगों का वक्त है सॉन्ग डिकोड करने का।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: तो सॉन्ग डिकोड करने का वक्त आ चुका है, मतलब ये वही टाइम है जब हम लोग सॉन्ग्स को डिकोड करते हैं। आरजे गौरव इन द हाउस, आप सभी का स्वागत करता है रेडियो महारानी 89.6 पर। प्रोग्राम का नाम है HR 896, गाड़ी का नंबर है मेरी HR 896। एक गाना सुना आप लोगों ने, रिम झिम गिरे सावन, कितना प्यारा गाना है ना। 1979 में फिल्म आई थी मंजिल, उसमें ये गाना कंपोज किया गया था RD बर्मन द्वारा। सोचो यार क्या अमेजिंग गाना था। और पता आपको, ये इसमें ना एक राग थी, राग किरवानी कहते हैं इसे, माइनर स्केल पे। जो लोग शायद म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को पता लग रहा होगा। और इसमें ताल भी है, मतलब म्यूजिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोगों को पता ही नहीं है, हम तो बस यूं ही गा देते।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: मैं लाइकी थी
4: आशा इस पंजाब।

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले वो इंसान हमसे क्या पूछता है, क्या हाल है? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। आरजे गौरव आप सभी का स्वागत करता है रेडियो महारानी पर। और जो मैं बात बोल रहा हूँ, क्या हाल है, हम लोग अक्सर लोगों से पूछते हैं, तो इस सेगमेंट का नाम भी है क्या हाल है। सब बोलते हैं बढ़िया, मगर बारिश के बाद क्या हाल होता है? सड़क बोलती है पहले मुझे पार करके दिखा, फिर बताइए क्या हाल है। और बारिश के बाद सड़क का हाल ऐसा है जैसे कि गवर्नमेंट ने रोड नहीं फ्री में मड स्पा खोल दिया हो। आप लोगों को पता है ना मड स्पा क्या होता है? अच्छा, एक और चीज़, बारिश के बाद क्या होता है, डाइट का हाल। ऐसा हम लोग बोलते हैं, कंट्रोल में ही तो है, एक समोसा ही तो खाया, क्या हो गया? फिर बारिश होती है ना तो समोसा बोलता है बेटा आज तो तेरा चीट डे ही होगा। और बारिश के बाद सड़क हो जाती है कीचड़, डाइट हो जाती है पकौड़े, और वॉलेट हो जाता है डिप्रेशन में, क्योंकि बारिश के बाद खर्चे बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को टैक्सी करनी है तो उसमें भी चार्जेस बढ़ जाते हैं, कोई कॉमर्स से कुछ भी मंगाना है तो उसके भी चार्जेस बढ़ जाते हैं। और एक और बात मैं अगर बोलूं तो हम लोग बोलें क्या हाल है, तो समझने वाला इंसान बोलता है डाइट चल रही है, मगर बाहर बारिश में पकौड़े तलने की आवाज़ आई तो डाइट तुरंत रिजाइन डाल देती है। ये चीज़ तो आप लोगों के साथ भी होती होगी कि बारिश के बाद डाइट वगैरह सब भूल जाओ, क्या चीज़ है डाइट वगैरह। एंड सड़क का हाल हो जाता है इतना कीचड़ है कि गूगल मैप से बोल देता भाई तू रहने दे, स्विमिंग कर ले, स्विमिंग का ऑप्शन नहीं होता वैसे गूगल मैप में। और बारिश के बाद सड़क और डाइट में एक ही सिमिलैरिटी होती है, दोनों को कंट्रोल करने का प्लान तो होता है पर होता कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। और बारिश के बाद असली हाल होता है, सड़क कीचड़ में होता है, कपड़े मिट्टी में होते हैं, और डाइट हमारे समोसे के अंदर भरी होती है, समोसे नहीं तो पकोड़े के अंदर भरी होती है कि नहीं? तो चलिए ये था आज का क्या हाल है। और अगर आप लोगों को भी बताना है आपका क्या हाल है तो बता सकते हैं, नंबर है जी हमारा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

क्या आप लोगों को मालूम है एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। साइबर क्रिमिनल्स स्कैम को एक्टिवेट करके बैठे हुए हैं और किसी भी समय आप लोगों में से किसी भी एक को हनी ट्रैप में फंसा सकते हैं। नहीं नहीं, बेसिकली मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, और इन्फॉर्म करना तो मेरा काम है ना, है कि नहीं? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड अभी मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि देखो, हनी ट्रैप क्या होता है ये? हनी और ट्रैप बेसिकली शहद का एक जाल नहीं है, ये है सारे उन लड़कों के लिए जो बिल्कुल बेचैन होकर बैठे नहीं रहते सोशल मीडिया पर कि भाई हम किसी से बात करनी है, हमें अपोजिट जेंडर से नहीं करनी आप लोगों ने ये सब हरकतें, क्योंकि आप लोगों की इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स आपके साथ ठगी कर सकते हैं। आपको एक अननोन वीडियो कॉल आएगा, हो सकता है इंस्टाग्राम पर आए, हो सकता है आपके फेसबुक पर आए, हो सकता है आपके व्हाट्सएप पर आए, तो अननोन वीडियो कॉल आएगा। जब भी अननोन वीडियो कॉल आती है आपको उठाना बिल्कुल भी नहीं है, अगर गलती से उठा भी लिया तो अपने कैमरे के आगे हाथ रख दीजिए, क्योंकि वहाँ पर वो क्या करेंगे, वो करेंगे ये कि सामने से आपको कुछ ऑब्सीन चीज़ें दिखाई जाएगी और फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपकी शक्ल कैद हो गई, अब हम इसको यूट्यूब पर डाल देंगे, इंस्टाग्राम पर डाल देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे, सब कुछ। तो आप उनको बस ये बोलना बेटा डाल दे, क्योंकि वो नहीं डालने वाले। अगर उन्होंने डाल दिया तो उनका आईपी एड्रेस ट्रैक हो सकता है, उन किस डिवाइस से डाल रहे हैं वो चीज़ ट्रैक हो सकती है, तो वो ये गलती कभी नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहले आप लोगों को साइबर सेल में इन्फॉर्म करना है। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, ऐसे और भी टिप्स लेकर आते रहूंगा। फिलहाल आप सभी के लिए गाना चला रहा हूं, गाने का नाम है वशीकरण।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
5: जब शाम को चाहिए।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

यो गाइस, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है और वक्त हो चुका है नाइटमेयर का। नाइटमेयर मींस नॉट बुरे सपने नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, मैं सपनों को डिकोड कर रहे हैं यहाँ पर और हम लोग आप लोगों के साथ सारे सपनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो सपने में क्या होता है, सपने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट आज मैं जिस सपने की बात करने वाला हूँ वो है, सपने में कभी आप लोगों ने मछली देखी है? क्योंकि मैंने कल ही देखी, कल मीन्स कल रात को और आज सुबह बेसिकली देखी मैंने सपने में। और इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ खुशखबरी आने वाली या फिर फाइनेंशियल गेन होने वाला है। तो क्या मेरे पास फाइनेंशियल गेन होने वाला है? पैसा ही पैसा होगा। चलिए खैर बता दूँ आपको, शुभ संकेत माना जाता है मछली का दिखना। जैसे तैरती हुई मछली है, रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, मछली पकड़ रहे हो अगर आप लोग, इसका मतलब है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और अगर मछली खाते हुए देख रहे हो तो फिर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ कुछ ना बैड साइंस भी होते हैं सपनों के, जैसे कि अगर आप मछली देख रहे हो और आपने देखा मरी हुई मछली है, तो गंदे पानी में मरी हुई मछली का मतलब है कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। या फिर अगर तड़पती हुई मछली देख रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि परेशानी आने वाली है, तो उसकी चेतावनी है। तो सपने ना सिर्फ एक सपना नहीं होता, वो बहुत कुछ होता है, वो बहुत कुछ बताता है, जीवन में आने वाली चीज़ों के बारे में संकेत भी देता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने जो सपना देखा होता है वो असलियत में हो जाती है चीज़ें। अब देखो आपने सपने में देखा कि आप उड़ रहे हो, वो तो असलियत में नहीं होगा, बट हो सकता है आप प्लेन में बैठ के कहीं और जाने वाले हो, क्या पता आप लोगों की विदेश यात्रा के भोग लग रहे हो, कुछ भी और, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो सपने का कोई मतलब होता है और हम लोग इस टाइम हर रोज सपनों को डिकोड करते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, वापस आकर थोड़ा और भी बातें करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
2: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

0: है, अभी भी वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
1: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: छड़ीदा।
1: इसी गाने के साथ जिम ब्रो आ गए, मगर जिम ब्रो का दूसरा नाम भी है
2: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
1: तो जी रेडियो गौरव आप सभी के साथ है। एंड एक और बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे, ये कि अभी वक्त हो चुका है जिम ब्रो का। अगर आप लोग जिम जाते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं जाते हैं तो जाना शुरू कर दीजिए। अब मैं ऐसा बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो जिम जाने की कोशिश तो करते हैं, सोचते हैं कि हाँ हम लोग भी जिम ज्वाइन करेंगे, बट आउट ऑफ सम रीजंस वो लोग नहीं जा पाते। वो सोचते हैं कल ज्वाइन कर लेंगे, परसों ज्वाइन कर लेंगे। तो

0: क्या आप लोगों को पता है जब पानी जमा हो जाता है तो क्या होता है, उसमें मच्छर पैदा होने लगते हैं। और आपको पता है रोज शाम को 5 से 9 रेडियो महारानी 89.6 पर कौन आता है? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी हाँ बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी के साथ फिर से हाजिर है रोज शाम को 5 से 9 मंडे टू फ्राइडे। आऊंगा मैं और अभी भी आपके साथ जुड़ा ही हुआ हूँ। खैर वक्त हो चुका है मेरा यहाँ से जाने का, मगर जाने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि आज तो फ्राइडे है ब्रो, कोई तो पार्टी के प्लान्स होंगे। और मौसम को देखने के बाद तो अच्छे से अच्छा इंसान जो रुकना भी चाहता है वो भी नहीं रुक पाएगा, क्योंकि बारिश हुई ही ऐसी है। एंड फ्राइडे है तो देखो वक्त तो वैसे हो चुका है मेरा यहाँ से जाने का, मगर इसके साथ में एक गुजारिश करना चाहूंगा आप लोगों से। ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं और मेरी घड़ी में हो रहे हैं 8:48, आपकी घड़ी में भी इतना ही हो रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। खैर अभी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपके घर के आसपास पानी जमा हो रखा होगा कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ देखो आज बारिश हुई अच्छी वाली, तो प्लीज़ आप उस पानी में पेट्रोल डाल दीजिए थोड़ा सा, एक ढक्कन एक चम्मच, और हो सके तो वो वाटर लॉगिंग वाला एरिया ना उसकी फोटो क्लिक करके MCF को ज़रूर भेजना, कंप्लेंट डालिए, क्योंकि आवाज़ उठाएंगे तभी उस पर कार्रवाई होगी। तो चलिए इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं कौन हूँ? बिल्कुल रेडियो का गौरव ही मिलेगा आप लोगों से, और अभी लेता हूँ इजाजत। तो दिस वॉज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सायोनारा। एंड सुनिए इस गाने को जिसका नाम है दिव्य दृष्टि। क्या है दिव्य दृष्टि, सुनिए एंजॉय कीजिए और वापस आएगी गीत विदेश को बाजिया। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके
1: देव, मैं हूँ बैरागी भोले, तेरी वजह से हूँ मैं प्रेमी हूँ मैं पापी हूँ मैं माल पी के मजे में हूँ मैं नशे में हूँ इतना ज्यादा कि बुरे कर्म भी ठीक

एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं। एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है। मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन सा

संसार गना पर बुद्धि को एकांत करा, मैं पढ़ता गया मैं पढ़ता गया। मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा, मैं शून्य बना मैं शांत बना। डी वॉइस मैं देवांश बना, मैं लिखता गया अब कोई लगाम विचार पे ना।

कोरोना के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मेरा नाम डॉक्टर रवि शेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश और बदलते हुए मौसम में सांस के मरीजों के लिए काफ़ी तकलीफें आ सकती है। खास तौर पे ध्यान रखने की बात होती है कि जैसे ही बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में नमी बढ़ती है, तो वायरल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही में बारिश के मौसम में हम गर्मी से सर्दी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो इस चेंजिंग वेदर में सांस के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है। खास तौर पे जिनको अस्थमा या सीओपीडी नाम की बीमारी है, उनकी सडनली वर्सनिंग होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको इनहेलर या नेबुलाइजर चलते हैं तो उसको इस मौसम में बिल्कुल भी बंद ना करें। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

यात्रीगण कृपया ध्यान, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

हेलो हेलो फरीदाबाद, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज ट्रैफिक नहीं मल्टीवर्स क्रॉस होने वाला है। मैं हूँ आपकी आरजे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके, जहाँ बातें भी रॉयल हैं और रिव्यूज बिल्कुल स्पॉइलर फ्री बट सेवेज। वेलकम टू रिव्यू अड्डा। तो यहाँ मैं आपको मूवी की कहानी नहीं बताने वाली, स्टोरी तो भैया आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगी मूवी में मसाला कितना था, लॉजिक कितने हॉलिडे पे गया था और पैसा वसूल हुआ या सिर्फ पॉपकॉर्न ही महंगे थे। और हाँ, यहाँ फैन भी खुश होंगे और हेटर भी ऑफेंड नहीं होंगे क्योंकि मैं रिव्यू करती हूँ दिल से और थोड़ा सा ट्रोल करके। तो आज जिस सुपर हीरो के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उसके पास ना बैट मोबाइल है, ना बिलियन डॉलर्स, ना एस्गार्ड का एड्रेस। अब इनके पास बस एक स्पाइडर था और उसने इनका करियर बना दिया। और ऑनेस्टली अगर स्पाइडरमैन इंडिया में होता ना, आधे टाइम ट्रैफिक सिग्नल पर ही लटका मिलता और बाकी आधे टाइम आरडब्ल्यूए वाले नोटिस भेज रहे होते। सोसाइटी की बिल्डिंग पर वेब मारना स्ट्रिक्टली मना है भाई। और स्पाइडरमैन की लाइफ देखकर एक ही फीलिंग आती है, हम ऑफिस जाते ही बोल देते हैं यार आज मूड नहीं है। और उधर बंदा असाइनमेंट, रिलेशनशिप, विलन, यूनिवर्स सब एक ही दिन में हैंडल कर रहा है। ये सुपर हीरो कम मिडिल क्लास मल्टीटास्किंग का ब्रांड एम्बेसडर ज्यादा लग रहा है। और सबसे बात पता है क्या है, बेस्ट स्पाइडरमैन कौन है बस ये पूछ लो, फिर देखना कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप ग्रुप, ऑफिस, कैंटीन, हर जगह सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। एक बोलेगा टॉबी इज इमोशन, दूसरा बोलेगा एंड्रयू डिजर्व बेटर और तीसरा कहेगा टॉम इज द फ्यूचर। और मार्वल कॉर्नर में पॉपकॉर्न खा रहा होगा। तो आज ना हम स्पॉइलर देने वाले हैं, ना पूरी स्टोरी सुनाएंगे, बल्कि बात होगी स्पाइडरमैन के क्रेज की, इसके आइकॉनिक मोमेंट्स की, फैंस के पागलपन की और उन डिटेल्स की जो शायद आपकी नजर से मिस हो गई होंगी। तो वेब टाइट रखिए, वॉल्यूम फुल रखिए क्योंकि रिव्यू अड्डा का पहला एपिसोड अब ऑफिशियली स्विंग होने वाला है। मैं हूँ आरजे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है रिव्यू अड्डा और मैं बात करने वाली हूँ अब उस टॉपिक की जिसपे मार्वल फैंस की दोस्ती तक टूट जाती है। बेस्ट स्पाइडरमैन आखिर कौन है? सीरियसली इस टॉपिक पर डिबेट इतनी ज्यादा होती है कि लगता है यूनाइटेड नेशंस को भी इन्वेंशन करना पड़ेगा। तो एक साइड है टीम टॉबी, उनका मानना है ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है ना बॉस, इसीलिए स्पाइडरमैन सिर्फ सुपर हीरो नहीं बचपन का इमोशन है। और ऑनेस्टली जब टॉबी मास्क उतारता था ना तो लगता था भाई थोड़ा पानी पिला दो, बहुत मार खा के आया है। फिर आते हैं एंड्रयू, ये लोग हर दूसरी लाइन में ये बोलते हैं ही डिजर्व्स बेटर। और सच बताऊं एंड्रयू के फैन इतनी बार ये लाइन बोल चुके हैं कि मार्वल भी शायद अब गिल्टी फील करने लगा होगा। वैसे बंदा स्टाइल में फुल मार्क्स लेता है, स्विंग भी स्टाइलिश है, एंट्री भी, और हार्ट ब्रेक ओफ यार, इसके बारे में मैं ना कहूं तो बेहतर है। उसके बाद तो पूरा थिएटर ही चुप हो गया। और फिर एंट्री होती है टॉम हॉलैंड की, जेन जी का फेवरेट। अब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं, लोग कह रहे हैं स्पाइडरमैन कम गोल्डन रिट्रीवर ज्यादा लगता है क्या, हर वक्त एक्साइटेड मिस्टर स्टार्क। भाई एक दिन तो टोनी स्टार्क भी सोचता होगा बेटा थोड़ा मुझे भी जीने दे। और आपने एक चीज नोटिस की है, हर स्पाइडरमैन की लाइफ का सिलेबस सेम है, पहले स्कूल, फिर लव स्टोरी, फिर विलन, फिर इमोशनल डैमेज। मार्वल वाले शायद ज्वाइनिंग लेटर के साथ थेरेपी कूपन भी देते हैं। वैसे एक बात बताऊं, स्पाइडरमैन की टाइमिंग देखी है, एग्जाम हो, डेट हो, बर्थडे हो, हर बार विलन को भी वही दिन अटैक करना होता है। और सबसे फनी चीज, मास्क पहन लो कोई पहचानता ही नहीं। मतलब अगर इतना इजी होता तो इंडिया में आधे लोग हेलमेट पहन के सुपर हीरो ना बन जाते। से एक बात सब स्पाइडरमैन में कॉमन है, ये कभी परफेक्ट हीरो नहीं बने, गलतियां की, गिरे, रोए, डरे, और शायद इसी वजह से स्पाइडरमैन हमें सुपर हीरो कम अपने जैसा इंसान ज्यादा लगता है। तो अब थोड़ी ही देर में मैं सीधा बात करूंगी हमारे मेन मुद्दे पर, यानी कि स्पाइडरमैन जो अभी रिसेंटली आई है उस फिल्म के बारे में। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है रिव्यू अड्डा।

मेरा नाम डॉक्टर रवि शेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश और बदलते हुए मौसम में सांस के मरीजों के लिए काफ़ी तकलीफें आ सकती हैं। खास तौर पे ध्यान रखने की बात होती है कि जैसे ही बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में नमी बढ़ती है, तो वायरल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही में बारिश के मौसम में हम गर्मी से सर्दी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो इस चेंजिंग वेदर में सांस के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है। खासतौर पर जिनको अस्थमा या सीओपीडी नाम की बीमारी है, उनकी सडनली वर्सनिंग होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको इनहेलर्स या नेबुलाइजर चलते हैं तो उसको इस मौसम में बिल्कुल भी बंद ना करें। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप हमको बताइएगा।
1: आप नहीं रुला गया तो?
2: नहीं, क्यों?
0: तो फिर हम फिर बताइएगा।

0: bad, bad girl.
1: देगी बिना फिल्टर
2: सच वाला रिव्यू,
1: यही है रिव्यू अत्तर
2: सिर्फ आरजे गीत के साथ।
3: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है रिव्यू अड्डा, और अब जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। जी हाँ, मार्वल स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स की ये मच अवेटेड फिल्म 30 जुलाई 2026 को इंडिया में रिलीज हो गई है, और रिलीज होते ही थिएटर्स में फैंस का एक्साइटमेंट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। और वैसे भी स्पाइडरमैन की एंट्री हो थिएटर में सीटियां ना बजे ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डेस्टिन डेनियल ने, और वंस अगेन पीटर पार्कर के रोल में नजर आ रहे हैं टॉम हॉलैंड। उनके साथ फिल्म में जेंडाया है, जेकॉब है, मार्क रुफेलो है, और सादिया सिंह भी है। हाँ, वही हमारी स्ट्रेंजर थिंग वाली, और ये सब इम्पोर्टेंट रोल में है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये फिल्म किस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, तो गुड न्यूज, तो ये फिल्म हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में भी थिएटर्स में रिलीज हो गई है। मतलब लैंग्वेज की टेंशन है हाथ में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद की स्टोरी को आगे लेकर चलती है। तो अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखी है तो सबसे पहले अभी देख लीजिए, उसके बाद इस फिल्म को देखिएगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, यहाँ मैं आपको बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं देने वाली है। मैं सिर्फ बात करूंगी कि इस बार पीटर पार्कर का जो सफर है वो पहले से ज्यादा पर्सनल है, ज्यादा इमोशनल है, और हर डिसीजन का वेट स्क्रीन पर आपको फील होने वाला है। तो क्या ये कमबैक फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरता है? बस इस बारे में ही बात होगी हमारे रिव्यू अड्डा में। तो वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है रिव्यू अड्डा।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर किसी ट्रेलर ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज क्रिएट किया है तो वो है रामायण। 30 जुलाई को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड बिलीव मी इंटरनेट लिटरली पॉज हो गया था। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने स्केल के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सबसे पहली बात कर लेते हैं विजुअल्स की। VFX इतने ग्रैंड और पॉलिश्ड लग रहे हैं कि काफी लोग बोल रहे हैं फाइनली माइथोलॉजी इज गेटिंग द सिनेमैटिक ट्रीटमेंट इट डिजर्व्स। और हाँ, सबसे ज्यादा सरप्राइज दिया है रणबीर कपूर ने। ट्रेलर आने से पहले बहुत सारे लोगों का एक ही कंसर्न था एनिमल के बाद क्या वो श्रीराम के रोल में एक्सेप्ट हो पाएंगे, लेकिन ट्रेलर के बाद काफी हद तक वो डाउट खत्म होता दिख रहा है। उनका काम, स्क्रीन प्रेजेंस और सटल एक्सप्रेशंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं साई पल्लवी। एस सीता बिल्कुल ग्रेसफुल, एलिगेंट और एफर्टलेस लग रही हैं। और अब बात आती है उस एंट्री की जिसका सबको था इंतजार, यश एस रावण। पावरफुल लुक, रॉयल ऑरा और सिर्फ कुछ ही सेकंड की प्रेजेंस में उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है। काफी लोग तो कह रहे हैं कि रावण का कैरेक्टर ऑलरेडी घूस पंप्स दे रहा है। और हाँ, एक बात फैंस ने जरूर नोटिस की है, ट्रेलर में हनुमान जी का प्रॉपर ग्लिम्स दिखा ही नहीं और बस इसी वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई है। शायद मेकर्स ने वो बिगेस्ट मोमेंट फिल्म के लिए सेव कर रखे हों। ओवरऑल ट्रेलर को ऑडियंस ने जबरदस्त रिस्पांस दिया है और बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है दिवाली 2026 का। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।

पैसा वसूल या पॉपकॉर्न वसूल। वेलकम बैक फरीदाबाद, मैं हूँ आरजे गीत और ये है रिव्यू अड्डा सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखनी चाहिए या नहीं? तो मेरा जवाब है, अगर आप स्पाइडरमैन फैन है तो टिकट बुक कर लीजिए भाई, और अगर फैन नहीं भी है तो भी एक चांस तो बनता है ना, क्योंकि इस बार फिल्म सिर्फ वेब स्लाइंगिंग और पंचेस तक लिमिटेड नहीं है, इस बार इमोशंस भी फुल स्क्रीन स्पेस लेते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ एकदम एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागता है, एक्शन, सरप्राइजेस और एक के बाद एक ऐसे मोमेंट्स जहां आप बस स्क्रीन से आंखें ही नहीं हटा पाएंगे, लेकिन सेकेंड हाफ थोड़ा सा ब्रेक लगता है। यहाँ फिल्म इमोशंस को एक्सप्लोर नहीं करती, इसलिए कुछ लोगों को पेस थोड़ा सा स्लो फील हो सकता है, लेकिन जैसे ही एक्शन वापस आता है, बॉस थिएटर फिर से स्टेडियम बन जाता है। और VFX मार्वल ने एक बार फिर बता दिया है, बजट हो तो ऐसा हो। विजुअल्स इतने ज्यादा ग्रैंड हैं कि कई सीन्स वॉलपेपर बनने लायक लगते हैं। ओवरऑल ये स्पाइडरमैन यूनिवर्स की बेस्ट फिल्म है, शायद नहीं लेकिन एक एंटरटेनिंग, इमोशनल और पैसा वसूल एक्सपीरियंस बिल्कुल है। तो मेरी तरफ से 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। तो अब थोड़ी ही देर में मैं बात करूंगी परफॉर्मेंसेस की, कि किसने दिल जीता और किसकी एंट्री पर थिएटर लिटरली तालियों से गूंज उठा। तो स्टे ट्यून्ड, रिव्यू अड्डा

Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हट के और आप सुन रहे हैं रिव्यू अड्डा. अब बात करती हूँ इस फिल्म की जान यानी कि एक्टिंग. सबसे पहले टॉम हॉलैंड. अब ये बंदा स्पाइडरमैन प्ले नहीं करता है, ये बंदा स्पाइडरमैन लिटरली लग रहा है. या हवा में उल्टे लटक कर एक्शन करना हो, हर फ्रेम में टॉम अपना 100% देता हुआ नजर आ रहा है. अब बात करते हैं जंडाया की. स्क्रीन टाइम भले ही कम हो लेकिन जितनी देर ये स्क्रीन पर रहती है उतनी देर ऑडियंस की अटेंशन पूरा इनके पास रहती है. और सादिया सिंह, इस फिल्म की सरप्राइज पैकेज, मैं स्पॉइलर नहीं देने वाली लेकिन इतना जरूर बोलूंगी, जब भी इसकी एंट्री होती है ना तो स्टोरी एक नया टर्न ले लेती है. जेकॉब का इमोशनल टच भी काफी ज्यादा जेन्युइन लगता है. और अब बात करते हैं उस एंट्री की जिस पर थिएटर में सबसे ज्यादा सीटियां और तालियां बजी. हल्क, बस इतना ही बोलूंगी, उससे ज्यादा बताया तो रिव्यू नहीं स्पॉइलर हो जाएगा. ओवरऑल कास्टिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट है और हर एक्टर अपना कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहा है. तो मैं थोड़ी देर में बात करूंगी डायरेक्शन, राइटिंग और एंड क्रेडिट सीन की. मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रिव्यू अड्डा सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर.

से पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आरजे गीत और आप सुन रहे हैं रिव्यू अड्डा सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। तो अब तक हमने बात कर ली है फिल्म की कहानी, स्टार कास्ट की, लेकिन किसी भी फिल्म को सिर्फ कलाकार नहीं बनाते, उसे एक अलग पहचान देता है उस फिल्म का डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग स्टाइल। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे के डायरेक्शन की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डस्टिन डेनियल ने, जिन्होंने कहानी को सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म की तरह नहीं बल्कि पीटर पार्कर के इमोशनल जर्नी के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्टर ने स्पाइडरमैन के एक्शन मोमेंट्स के साथ उसके अकेलेपन, उसके स्ट्रगल्स और उसके अंदर चल रही लड़ाई को भी इम्पोर्टेंस दी है, यानी मास्क के पीछे छुपे पीटर पार्कर को भी एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म की राइटिंग भी इसी डायरेक्शन में काम करती है, जहां सिर्फ विलन को हराना मकसद नहीं है बल्कि पीटर को खुद को दोबारा पहचानना है। हालांकि कुछ जगह फिल्म ये थोड़ी लंबी महसूस हो सकती है, लेकिन बड़े एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल मोमेंट इसकी कमी को काफी हद तक पूरा कर देते हैं। और अब बात उस चीज की जिसका इंतजार हर मार्वल फैन करता है, एंड क्रेडिट सीन, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। पहले गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है रिव्यू अड्डा।
1: Yeah.

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

0: आरजे गीत के साथ।
1: हाय वेलकम बैक, मैं हूँ आरजे गीत और आप सुन रहे हैं रिव्यू अड्डा सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। तो मैं बात कर रही हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। तो अब तक हमने बात कर ली है फिल्म की कहानी, स्टार कास्ट और परफॉर्मेंसेस की, लेकिन मार्वल की फिल्म हो और एंड क्रेडिट सीन की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बात करते हैं स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे के एंड क्रेडिट सीन के बारे में। बिना स्पॉइलर दिए इतना जरूर कहूंगी, ये सीन सिर्फ एक एक्स्ट्रा ग्लिम्प्स नहीं बल्कि स्पाइडरमैन की आगे की जर्नी के लिए इम्पॉर्टेंट हिंट दे रहा है। मार्वल हमेशा अपनी फिल्मों में छोटे छोटे क्लूज ऐसा छोड़ता है जो आने वाली कहानियों की तरफ इशारा करते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एंड क्रेडिट सीन खासकर उन फैंस के लिए एक्साइटिंग है जो स्पाइडरमैन यूनिवर्स को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की एक झलक भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप पहली बार स्पाइडरमैन की दुनिया में आए हैं तो शायद आपको इसका पूरा मतलब समझाने के लिए आगे आने वाली फिल्मों का इंतजार करना पड़े। तो कुल मिलाकर थिएटर में फिल्म देखने जाएं तो क्रेडिट शुरू होते ही अपनी सीट बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, क्योंकि स्पाइडरमैन की कहानी सिर्फ फिल्म खत्म होने के बाद खत्म नहीं होती है। फिलहाल इतना ही, अब थोड़ा सा वक्त हो जाए म्यूजिक सुनने का। सुनते हैं एक शानदार गाना और गाने के बाद वापस लौटूंगी। शो है रिव्यू अड्डा सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।
2: Carnival, the last ride, King.

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर किसी ट्रेलर ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज क्रिएट किया है तो वो है रामायण। 30 जुलाई को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड बिलीव मी इंटरनेट लिटरली पॉज हो गया था। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने स्केल के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सबसे पहली बात कर लेते हैं विजुअल्स की। VFX इतने ग्रैंड और पॉलिश्ड लग रहे हैं कि काफी लोग बोल रहे हैं फाइनली माइथोलॉजी इज गेटिंग द सिनेमैटिक ट्रीटमेंट इट डिजर्व्स। और हाँ, सबसे ज्यादा सरप्राइज दिया है रणबीर कपूर ने। ट्रेलर आने से पहले बहुत सारे लोगों का एक ही कंसर्न था एनिमल के बाद क्या वो श्रीराम के रोल में एक्सेप्ट हो पाएंगे, लेकिन ट्रेलर के बाद काफी हद तक वो डाउट खत्म होता दिख रहा है। उनका काम, स्क्रीन प्रेजेंस और सटल एक्सप्रेशंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं साई पल्लवी। एस सीता बिल्कुल ग्रेसफुल, एलिगेंट और एफर्टलेस लग रही हैं। और अब बात आती है उस एंट्री की जिसका सबको था इंतजार, यश एस रावण। पावरफुल लुक, रॉयल ऑरा और सिर्फ कुछ ही सेकंड की प्रेजेंस में उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है। काफी लोग तो कह रहे हैं कि रावण का कैरेक्टर ऑलरेडी घूस पंप्स दे रहा है। और हाँ, एक बात फैंस ने जरूर नोटिस की है, ट्रेलर में हनुमान जी का प्रॉपर ग्लिम्प्स दिखा ही नहीं और बस इसी वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई है। शायद मेकर्स ने वो बिगेस्ट मोमेंट फिल्म के लिए सेव कर रखे हो। ओवरऑल ट्रेलर को ऑडियंस ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है और बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है दिवाली 2026 का। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।

0: तो इसी गाने के साथ स्वागत है शो है रिव्यू अड्डा सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। तो अब हम बात करेंगे इस फिल्म के वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी की, क्योंकि स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो फिल्म्स में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उसके विजुअल एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक इसका ग्रैंड विजुअल स्केल है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और बड़े बड़े सेट पीसेस को जिस तरह पर्दे पर दिखाया गया है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है। वीएफएक्स की बात करें तो स्पाइडरमैन की दुनिया को काफी डिटेल तरीके से क्रिएट किया गया है। हर फाइट सीक्वेंस में एक अलग सी एनर्जी नजर आती है और कैमरा वर्क आपको एक्शन के बीच में होने का फील देता है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म में एक अलग लेवल देती है। शॉट्स की फ्रेमिंग, मूवमेंट और बड़े स्केल पर शूट किए गए सीन स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को और ज्यादा जस्टिफाई कर रहे हैं। हालांकि कुछ जगह स्टोरी और इमोशन ज्यादा फोकस में होने की वजह से पेस थोड़ा सा स्लो महसूस हो सकता है, लेकिन जब भी स्पाइडरमैन एक्शन मोड में आता है स्क्रीन पर पूरी तरह इम्पैक्ट दिखाई देता है। कुल मिलाकर अगर आप सुपर हीरो फिल्म्स के विजुअल एक्सपीरियंस के फैन हैं तो ये फिल्म आपको बड़े पर्दे पर ज्यादा इंजॉय करवाएगी। तो आगे मैं बात करने वाली हूँ फिल्म के कुछ और खास पहलुओं पर, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी शो है रिव्यू अड्डा।
1: Plate is a myth when the rent is due, but hunger is home. It hurts straight in the ribs when I suffer.

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

बजे गीत के साथ। वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके तो मैं बात करने वाली हूँ अब फिल्म के उस हिस्से के बारे में जो इसे सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस बनाता है, और वो है पीटर पार्कर का कैरेक्टर जर्नी। स्पाइडरमैन की सबसे खास बात हमेशा यही रही है कि मास्क के पीछे एक आम इंसान छुपा हुआ है, और इस बार फिल्म भी उसी इमोशन को आगे बढ़ा रही है। पीटर के पास पावर्स है लेकिन उसके पास अपनी भी परेशानियां हैं। वो लड़ाई सिर्फ विलन से नहीं लड़ रहा बल्कि अपने पास्ट, अपने लॉसेस और अपनी नई रियलिटी से भी लड़ रहा है, और यही चीज स्पाइडरमैन को बाकी सुपर हीरो से थोड़ा सा अलग देती है, क्योंकि यहाँ ऑडियंस सिर्फ एक्शन नहीं देख रही बल्कि पीटर के साथ उसका दर्द, उसकी जर्नी भी फील कर रही है। और शायद और यही वजह है कि स्पाइडरमैन की कहानी हर जनरेशन से कनेक्ट करती आई है, क्योंकि हर किसी ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में कुछ खोया है, कुछ बदला है और फिर खुद को दोबारा खड़ा किया है। तो अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म सिर्फ एक्शन के लिए नहीं बल्कि पीटर पार्कर के इस इमोशनल राइड को भी आपको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है रिव्यू अड्डा।

0: Svegi bina filter,
1: sač vala review,
0: yehi hai review attack,
1: sirf RJ Geet ke saath.
2: हाय वेलकम बैक, मैं हूं आरजे गीत और आप सुन रहे हैं रिव्यू अड्डा सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। तो मैं बात करने वाली हूं कि आखिर स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे ऑडियंस और खासकर स्पाइडरमैन फैंस के लिए कैसा एक्सपीरियंस लेकर आई है। देखिए स्पाइडरमैन सिर्फ एक सुपर हीरो तो बिल्कुल नहीं है भैया, एक इमोशन है ये। कई लोगों ने पीटर पार्कर के कैरेक्टर को सालों से फॉलो किया है और इस बार भी फिल्म उसी कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन अब ऑडियंस के बीच अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। उसकी इनो सेंस, उसका ही उम्र और उसकी स्ट्रगल्स लोगों को बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करा रही है। इस फिल्म में भी फैंस के लिए कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो एक्साइटमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो एक्शन सीक्वेंस हो, कैरेक्टर मोमेंट्स हो या फिर छोटे छोटे रेफरेंसेस जिन्हें मार्वल फैंस तुरंत पकड़ लेते हैं। हालांकि अगर आप सिर्फ एक फास्ट पेस्ड एक्शन मूवी देखने जा रहे हैं तो आपको कुछ हिस्से थोड़े से स्लो लग सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पाइडरमैन के सफर को फॉलो करते आए हैं तो ये फिल्म ज्यादा इम्पैक्ट करेगी आपको, क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ एक सुपर हीरो की नहीं बल्कि उस इंसान की है जो हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। तो बचा है फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट, क्या स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे अपने नाम के हिसाब से ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाई या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है रिव्यू अड्डा।

एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका एस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

सो इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है रिव्यू अड्डा और अब वक्त आ गया है फिल्म के फाइनल वर्डिक्ट का कि आखिर स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे आपके टाइम और टिकट के लायक है या नहीं। देखिए ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, कुछ जगह आपको पेस थोड़ा सा स्लो लग सकता है, लेकिन जिस तरह फिल्म पीटर पार्कर के इमोशनल साइड, उसके स्ट्रगल्स और उसकी जर्नी को दिखाती है वो इसे बहुत ज्यादा अलग बना देती है। एक्शन, विजुअल्स, परफॉर्मेंसेज और स्पाइडरमैन का चार्म, ये सारी चीजें मिलाकर फिल्म को एक एंटरटेनिंग सुपर हीरो एक्सपीरियंस बना देती हैं। टॉम हॉलैंड एक बार फिर से प्रूव कर देते हैं कि वो इस कैरेक्टर को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। उनके लिए स्पाइडरमैन सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुका है। तो अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं तो इस फिल्म में आपके लिए बहुत कुछ है, और अगर आप सुपर हीरो मूवीज पसंद करते हैं तो बड़े पर्दे पर इसका एक्सपीरियंस लेना डेफिनेटली वर्थ इट है। तो आरजे गीत की तरफ से स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे को मिलते हैं 3.5 स्टार्स। वैसे हमने सारी बातें कर ली है लेकिन बात विलन की तो रह गई है। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है रिव्यू अड्डा।

वेलकम बैक गाइज, यू आर लिसनिंग टू फेवरेट सेगमेंट सिनेमा कैप्सूल। मैं हूँ आरजे गीत और यहाँ मैं रिव्यूज नहीं देती बल्कि बताती हूँ कि वीकेंड का डेटा पैक इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मुसाफिर कैफे की, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है इन दिनों। अब ऑनेस्टली ओटीटी पर इतना अच्छा कॉन्टेंट आ रहा है, रिमोट से ज्यादा तो थंब वर्कआउट कर लेता है। हाफ एन आवर सिर्फ स्क्रॉल करने में निकल जाता है और एंड में वही पुराना सिटकॉम ऑन। लेकिन मुसाफिर कैफे इज अ लिटिल डिफरेंट। सबसे पहले विक्रांत मेसी, ये बंदा भाई एक्टिंग नहीं करता, बस स्क्रीन पर आ जाता है और बाकी के इमोशंस ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। इसको ओवर एक्टिंग का पासवर्ड शायद आज तक मिला ही नहीं। और अच्छी बात यह है कि ये सीरीज अननेसेसरीली लाउड बनने की कोशिश नहीं करती, ना फोर्स्ड एक्शन, ना रैंडम ट्विस्ट, ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर सीन में चलता रहता है, बल्कि एवरीथिंग फील सिंपल ऑर्गेनिक। वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी काफी नेचुरल लग रही है। तीनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर बिल्कुल एफर्टलेस फील होती है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो स्लो कन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं, जो कॉफी पे दो घंटे बैठ सकते हैं और जिन्हें हर 10 मिनट में एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हर एपिसोड के बाद बोलते हो बस ट्विस्ट कहाँ है यार, तो मे बी दिस वंस नॉट योर कप ऑफ कॉफी। लेकिन अगर मूड है समथिंग काम, फील गुड और जेन्युइनली वेल परफॉर्म देखने का, देन मुसाफिर कैफे डेफिनेटली डिजर्व अ चांस। मैं हूँ गीत और मिलते हैं नेक्स्ट सिनेमा कैप्सूल में, क्योंकि ओटीटी पर कंटेंट खत्म हो सकता है लेकिन भाई मेरी बातचीत खत्म नहीं होगी। तो वक्त है गाने का, गाना सुनकर आते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: देगी बिना फिल्टर
1: सच वाला रिव्यू,
0: यही है रिव्यू अत्तर
1: सिर्फ आरजे गीत के साथ।
2: हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक, मैं हूँ आरजे गीत और आप सुन रहे हैं रिव्यू अड्डा सिर्फ रेडियो महारानी पर। भाई वैसे हमने सारी ही बात कर ली है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि फिल्म की पूरी कहानी पर बात कर ली है, लेकिन फिल्म के विलन एंगल की भी बात कर लेते हैं। इस बार स्पाइडरमैन की लड़ाई सिर्फ एक ऐसे विलन से नहीं है जो दुनिया को खत्म करना चाहता है, बल्कि कहानी में विलन का रोल पीटर पार्कर की जर्नी से भी जुड़ा हुआ है। फिल्म कोशिश करती है कि विलन सिर्फ एक थ्रेट ना लगे, बल्कि उसकी प्रेजेंस कहानी को आगे बढ़ाने और पीटर को चैलेंज करने का काम करे। हालांकि स्पाइडरमैन की असली लड़ाई इस बार बाहर से ज्यादा अंदर की है, और अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार हर कोई मार्वल फैन करता है। वैसे ऑलरेडी हमने थोड़ा सा टच कर दिया है, लेकिन फिर भी बात करेंगे एंड क्रेडिट सीन के बारे में। तो बिना स्पॉइलर दिए इतना कहूंगी, एंड क्रेडिट सीन फ्यूचर स्टोरी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग हिंट जरूर दे रहा है। इसमें स्पाइडरमैन यूनिवर्स में आगे क्या हो सकता है उसकी छोटी सी झलक देखने को मिल रही है। अभी मत कहिएगा कि मैंने स्पॉइलर दे दिया है, लेकिन आप कुर्सी की पेटियों को बिल्कुल बांध लीजिएगा। इसीलिए अगर आप फिल्म को देखने जाएं तो क्रेडिट शुरू होते ही थिएटर से बाहर मत निकल जाइएगा, क्योंकि मार्वल की फिल्मों में कई बार असली एक्साइटमेंट वहीं छुपी होती है। तो ओवरऑल स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे एक एंटरटेनिंग सुपर हीरो फिल्म है जिसमें एक्शन के साथ इमोशंस और पीटर पार्कर की पर्सनल जर्नी भी देखने को मिलती है। तो ये था रिव्यू अड्डा, मैं मिलूंगी एक और फिल्म के साथ, लेकिन अभी इजाजत लेती हूँ। तो साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: चली।
1: कई बार ना कई चीजों को सुनकर देखकर ऐसे लगता है कि ये तो कभी नहीं पता था ये कैसे हुआ। तो बस ऐसे ही बातें करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ और टाइम हो गया इंटरेस्टिंग फैक्ट का। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आज मेरे पिटारे में आखिर ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कई बार ना हमें ऐसी चीजें पता चलती है जिन्हें सुनने के बाद ना सीधा ये निकलता है सही में ऐसा भी हो सकता है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपको पता है ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। अब आपको आपके एक्स की याद आ गई होगी क्योंकि वो आपका जो 1 दिल था वो भी तोड़कर चली गई ना। कोई बात नहीं, आज अपना दिल साइड रखकर ऑक्टोपस के 3 दिल की बात सुन लेते हैं। अगर मैं 3 दिल की बात करूँ तो 3 दिल का काम है। 2 दिल ऑक्टोपस के गिल्स तक खून पहुंचाते हैं और जो 3रा दिल है वो पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। तो ये जो 3 दिल है ना वो अपना काम बराबर करता है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब ऑक्टोपस तैरता है ना तो उसका जो मेन दिल होता है वो कुछ देर के लिए धड़कना बंद कर देता है और यही रीजन है कि ऑक्टोपस बहुत देर तक तैरना पसंद नहीं करता। नेचर के पास वाकई कमाल का सरप्राइज है और कई बार लगता है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट भी करती है। तो जरूर कहते हैं, अब आप ये सोचो अगर ऑक्टोपस की गर्लफ्रेंड उसका दिल तोड़ भी देना तो फिर भी उसके पास 2 दिल है तो वो 2 दिल से काम चला लेगा। लेकिन आपके पास 1 ही दिल है तो अपने दिल का ख्याल जरूर रखेगा। और पता है ना हार्ट हेल्थ का ख्याल कैसे रखता है, तो बस हो जाइए शुरू और साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: प्यार, प्यार दोस्ती, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं।

कुछ लम्हे किताबों के पन्नों में कैद रहते हैं, कुछ लफ्ज मोहब्बत की स्याही में डूब कर लिखे जाते हैं और कुछ कहानियां बस दिल से दिल तक पहुंचने के लिए जन्म लेती हैं। और अभी वही सफर शुरू हो गया है जहां फासले मिटते हैं और मोहब्बत की आवाज आपके कानों से होते हुए आपके दिल में उतरती है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और ये खास सा जो सफर है, ये जो खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना, जहाँ हम सिर्फ शेरो शायरी नहीं सुनते बल्कि हम उन अल्फाजों में छुपी मोहब्बत को महसूस करते हैं, उस दर्द को समझते हैं जिनका इलाज सिर्फ एक आह नहीं है, और उन हंसी को भी संजोते हैं जो किसी खास के नाम शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है। तो आज फिर इस महफिल में मैं आपको ले चलूंगी उन शायरों की गलियों में जहां हर मोड़ पर एक एहसास खड़ा है, हर चौराहे पर एक मोहब्बत आपका इंतजार कर रही है और हर धड़कन एक शेर बनकर आपकी रूह को छूने के लिए तैयार है। तो आज एक ऐसे ही शायर के बारे में बातें होंगी जिन्होंने इश्क को जिया था। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
0: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

वैसे अचानक से कोई ये सवाल आपसे पूछ ले, है इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो लीजिए पेश है पहला शेर और शुरुआत होगी आज उस खूबसूरत से शायर से जिन्होंने मोहब्बत को जिया, जिनकी मोहब्बत अधूरी रह गई लेकिन अमर भी हुई, और नाम है इनका साहिर लुधियानवी, जो हमारी हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है। और कहते हैं मोहब्बत का सबसे सच्चा रूप वही है जो सिर्फ महसूस हो, जिसमें पानी की जिद ना हो, बस चाहने की ख्वाहिश हो। और शायद इसीलिए साहिर लुधियानवी की शायरी में हमें मोहब्बत एक सुकून और दर्द के साथ मिलती है। 1913 में लुधियाना में इनका जन्म हुआ। बचपन में पिता से अलगाव, जवानी में मोहब्बत की नाकामी और तन्हाई, इन सब ने उनकी कलम को एक ऐसा रंग दे दिया जो मोहब्बत के साथ साथ इंतकाम, समाज और इंसानियत के रंग भी समेटे हुए था। ये बहुत ही खास से शायर हैं और इनकी जो शायरी है जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये जिंदगी में भी तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती ही है। और साहिर का नाम अगर मैंने लिया है तो अमृता का नाम ना है, ऐसा नहीं होगा। साहिर का इश्क अमृता प्रीतम के साथ अधूरा रह गया और ये सब जानते हैं, लेकिन इस अधूरेपन ने उनकी शायरियों को अमर कर दिया। मतलब यार ये शायरों की खास बात होती थी कि वो अपनी मोहब्बत बेशक अधूरी छोड़ दें लेकिन पन्ने जरूर भर दिया करते थे उसी मोहब्बत के नाम जो अधूरी रह गई। ऐसे ही इनके कुछ किस्से हैं जो बहुत ही खास हैं, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं इन्होंने जो लिखा है उस पर कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो ये परेशानी है भाई, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी मत होना, ये पहली शर्त प्यार की होती है, ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन कितनी सीधी सी बात है ना, लेकिन दिल को आर पार चीर देने वाली बात है। साहिर की खासियत ही यही थी कि वो मोहब्बत को सिर्फ दिल और फूल में नहीं बांधते थे, बल्कि उसके पीछे का दर्द, समाज की बेरुखी और इंसान की मजबूरियां भी दिखाते थे। तो ऐसे ही कुछ बातें और ऐसे ही इनके कुछ किस्से मैं आपको बताती रहूंगी, लेकिन फिलहाल गाना सुनते हैं। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी

चित्रा की आवाज में है ये बहुत ही प्यारा सा गाना और एआर रहमान साहब ने इसको कंपोज किया है। लिरिसिस्ट है महबूब और फिल्म है बॉम्बे। और कुछ गाने ऐसे होते हैं ना

तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई है उसमें। वहाँ उन्होंने शाहजहां के इश्क को सलाम करने की बजाय उनके इश्क की हकीकत पर सवाल उठाए हैं कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, तुझको इस वादी

0: पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत। और बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिर लुधियानवी के बारे में बातें चल रही हैं। साहिर की शायरी सिर्फ इश्क की तारीफ नहीं चाहती, वो मोहब्बत में ईमानदारी चाहते हैं, खामोशी में गहराई चाहते हैं। और वो कहते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये महज एक लाइन है, लेकिन इस लाइन में मोहब्बत, तन्हाई और एक पूरे रिश्ते की कहानी लिखी गई है। आज के दौर में जब इश्क को दिखावे में जीने का चलन है, वहां साहिर हमें याद दिलाते हैं कि मोहब्बत का असली रंग खामोशी में है, वो जो सिर्फ दिल से महसूस की जाती है और शायद कभी पूरी नहीं होती। खैर, मैं इस बात को नहीं कहूंगी कि मोहब्बत वही असल है जो पूरी ना हो। अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आपका सिंपल पासवर्ड स्कैमर्स की इनकम स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो अब से अपने पासवर्ड बनाओ जैसे पकवान, ताकि स्कैमर्स ना पहुंचा सके आपको।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके।
3: आप सुन रहे हैं आरजे गीत को इश्क बाजिया में, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन है, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं एक टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल। FM 89.6 का

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास से सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोर दा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनको कैसे प्यार हुआ? इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वाली गीत और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी

को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्कबाजियां।

0: तले।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर

0: महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, न

स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहां जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद,
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

पल पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्क बाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्क बाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दियां गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां, और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है 3 यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां। और जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बन जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं। और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं, आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, केयर कम हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं इस ट्रैक को।

बातें आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में। है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़ें, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन, और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

ऐ काश कि हम होश में आने ना पाए। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। बातें चल रही हैं कि कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जाने। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिसे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है, और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूं। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

आसिया। इसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। शुरू हो गया है आपका अपना शो इश्क बाजियां और अब वक्त है उस हिस्से का जहाँ मोहब्बत सिर्फ किसी इंसान से नहीं बल्कि अल्फाजों से होती है, क्योंकि ये खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना, जहाँ हर रोज हम मिलते हैं एक ऐसे शायर से जिसने सिर्फ कविता या शायरी नहीं लिखी बल्कि हमारी जिंदगी के उन एहसासों को शब्द दिए हैं जिन्हें हम खुद कभी कह नहीं पाए। तो आज बात होगी उनकी, जिनकी लिखी हुई बातें सुनकर अक्सर लगता है कि यार ये तो मेरे दिल की बात है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुलजार साहब के बारे में। गुलजार साहब की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, वो चाय के ठंडे हो जाने में भी मोहब्बत ढूंढ लिया करते हैं, पुरानी किताब में दबे फूल में भी यादें देख लिया करते हैं और खामोशी में पूरी कहानी लिख दिया करते हैं। कभी सोचा है जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? धोखे का, जुदाई का, या फिर उस बात का जो हम कभी कह नहीं पाए? शायद इसीलिए गुलजार साहब के अल्फाज इतने सच्चे लगते हैं, क्योंकि वो उन बातों को जो हम महसूस तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में हम हर किसी से जुड़े हुए हैं लेकिन किसी के साथ हुए नहीं है। फोन में हजार चैट्स हैं लेकिन दिल की बातें कहीं ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं। और तभी गुलजार साहब याद दिलाते हैं कि रिश्ते साथ रहने से नहीं बल्कि महसूस करने से बनते हैं। तो वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

0: Luxury is not about what you wear, it's about how you carry yourself. Ilahe by Ritu invites you to Jashn, a premium fashion and lifestyle exhibition where elegance meets creativity and style meets sophistication.
1: यहाँ आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिजाइनर ensembles, स्टेटमेंट ज्वेलरी, लग्जूरियस एसेसरीज और हैंड पिक लाइफस्टाइल ब्रांड्स, ऑल क्यूरेटेड फॉर दोज हु अप्रिशिएट द फाइनर थिंग्स इन लाइफ. सो मार्क योर कैलेंडर्स 6th August, 11 AM to 8 PM, रेडिसन ब्लू.

आप सुन रहे हैं 89.6 FM और मैं हूं आपके साथ इश्क वाली गीत। इश्कबाजिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है और चल रही है हमारी महफिल इश्क शायराना की। कुछ लोग कहानियां लिखते हैं और कुछ लोग एहसास। गुजार साहब उन लोगों में से एक हैं जो खामोशी को भी अल्फाज देते हैं। तो एक ऐसा शेर लिखा है कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। सोचे कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी बड़ी सच्चाई छुपी हुई है इसमें। जिंदगी में हर रिश्ता साथ रहने का नाम नहीं होता। कुछ लोग दूर होकर भी हमारी आदतों में बस जाते हैं, हमारी बातों में, हमारी मुस्कुराहट में और कभी कभी हमारी खामोशी में। और शायद इसीलिए गुजार साहब की शायरी दिल के इतने करीब लगती है।

ऐसा इंसान है जिसे आपने बहुत दिनों से ये नहीं बताया कि उसकी मौजूदगी आपके लिए कितने मायने रखती है, तो आज कह दीजिए ना, क्योंकि रिश्ते इंतजार से नहीं, एहसास से जिंदा रहते हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM और ये है इश्क बाजियां। छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, लौटेंगे फिर कुछ और अल्फाज, कुछ और एहसास और ढेर सारी मोहब्बत के साथ। कहीं जाइएगा मत।

मेरा नाम डॉक्टर रवि शेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में सांस के मरीजों के लिए काफी तकलीफें आ सकती हैं। की बात होती है कि जैसे ही बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में नमी बढ़ती है, तो वायरल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। साथ ही में बारिश के मौसम

0: बोल, पता है ना इस वाले के?
1: किसे नहीं पता,

पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे वो हमारी ही कहानी लिख रहे हों। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी याद है जो आज भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है, तो उसे मिटाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कुछ यादें जख्म नहीं होती, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होती हैं। तो वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

मिला ही नहीं। और अच्छी बात यह है कि ये सीरीज अननेसेसरीली लाउड बनने की कोशिश नहीं करती, ना फोर्स्ड एक्शन, ना रैंडम ट्विस्ट, ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर सीन में चलता रहता है, बल्कि एवरीथिंग फील सिंपल ऑर्गेनिक। वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी काफी नेचुरल लग रही है। तीनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर बिल्कुल एफर्टलेस फील होती है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो स्लो कन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं, जो कॉफी पे 2 घंटे बैठ सकते हैं और जिन्हें हर 10 मिनट में एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हर एपिसोड के बाद बोलते हो बस ट्विस्ट कहाँ है यार, तो मे बी दिस वंस नॉट योर कप ऑफ कॉफी। लेकिन अगर मूड है समथिंग काम, फील गुड और जेन्युइनली वेल परफॉर्म देखने का, देन मुसाफिर कैफे डेफिनेटली डिजर्व अ चांस। मैं हूँ गीत और मिलते हैं नेक्स्ट सिनेमा कैप्सूल में, क्योंकि ओटीटी पर कॉन्टेंट खत्म हो सकता है लेकिन भाई मेरी बातचीत खत्म नहीं होगी। तो वक्त है गाने का, गाना सुनकर आते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के शो है इश्क बाजियां। हम बात कर रहे हैं गुलजार साहब के बारे में। तो आज की महफिल हमने नाम की गुलजार साहब की, जिन्होंने हमें सिखाया कि शायरी सिर्फ तुकबंदी नहीं होती, शायरी वो होती है जो बिना किसी अजनबी के दिल में जाकर भी अपना घर बना ले। गुलजार साहब की सबसे बड़ी खूबी यही है, वो जिंदगी को बहुत ध्यान से देखते हैं। बारिश हो, खिड़की पर बैठी धूप हो, पुरानी डायरी हो या किसी की खामोशी, हर चीज उनकी नजर में एक कहानी बन जाती है। उनका एक बहुत ही फेमस सा शेर है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। शायद हम सब कहीं ना कहीं उसी फुर्सत को ढूंढ रहे हैं जहां मोबाइल की घंटियां ना हो, काम का प्रेशर ना हो, बस अपने लोग हों और दिल की बातें हों। आज जब दुनिया बहुत तेज भाग रही है तो शायद हमें थोड़ा सा गुलजार साहब को पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा रुकने की, थोड़ा महसूस करने की और थोड़ा उन लोगों का शुक्रिया करने की जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। क्योंकि जिंदगी महंगे तोहफों से नहीं, छोटे लम्हों से बनती है। एक कप चाय, एक लंबी बातचीत, एक सच्ची दुआ और एक दिल से बोला गया अपना ख्याल रखना, कई बार यही मोहब्बत की सबसे बड़ी डेफिनेशन बन जाती है। तो आज की इस महफिल में अगर आप एक बात अपने साथ लेकर जाएं तो बस इतनी सी, अपनों को वक्त दीजिए, अपने इमोशंस को दबाइए मत और जिंदगी में कुछ पन्ने ऐसे भी रखिए जहां सिर्फ अल्फाज नहीं एहसास लिखे जाएं। तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेगमेंट है इश्क शायराना वो यहीं समाप्त होता है। तो जाते जाते गुलजार साहब की एक और लाइन, कभी तो चौंक के देखे कोई हमारी तरफ, किसी की आंख में हमको भी इंतजार दिखे। क्या खूबसूरत ख्वाहिश है देखे जाने की, समझे जाने की, और शायद यही तो हर दिल की सबसे सच्ची चाहत है। मैं हूं आपकी अपनी इश्क वाली गीत। आप सुन रहे थे इश्क बाजियां का खास सेगमेंट इश्क शायराना। तो हम इश्क शायराना में हम फिर से मिलेंगे एक नए शायर, नई सोच और कुछ ऐसे अल्फाजों के साथ जो शायद आपके दिल की आवाज बन जाए। तब तक मोहब्बत बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं और कुछ लोग अल्फाजों में हमेशा के लिए रह जाते हैं। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इश्क बाजियां अभी भी जारी है। तो इंतजार कीजिए अगले सेगमेंट का, रेट्रो इश्क। मैं जल्दी ही आपसे मिलने वाली हूँ।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियाँ वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहाँ मैं बात करती हूँ उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक पूरा एहसास होती है। और इश्क बाजियां में ये खास सेगमेंट है जिसका नाम है रेट्रो इश्क, एक ऐसा सफर जहाँ हम लौट कर आते हैं पुरानी मोहब्बत की उन कहानियों में, जहाँ इंतजार था, जुनून था और अपने किसी खास इंसान तक पहुंचने की खूबसूरत जिद थी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है, एक ऐसा इश्क जहां दो लोग अलग अलग देशों से थे, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी जबान अलग थी, लेकिन दिल की एक ही जबान थी, मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि एक ऐसा सफर चुना जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये होता है असली इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेट्रो इश्क, एक खूबसूरत मोहब्बत के सफर के साथ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुलाकात बनकर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट और दूसरी तरफ थी स्वीडन से आई एक लड़की। जब दोनों मिले तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। दिल्ली की गलियों में एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए चेहरे बनाता था, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। वो आर्टिस्ट थे प्रद्युमन कुमार और वो लड़की थी चार्लेट वॉन। चार्लेट स्वीडन से इंडिया आई थी और प्रद्युमन से मिली।

अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेजेस थे, बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से

0: बीमारी हो सकती है और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पोल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पोल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू।
1: Doctor calling.

शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर वक्त ने एक इम्तिहान लिया। चार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और प्रद्युमन रह गए इंडिया में। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाते हैं। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला हिस्सा, क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट

आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का तीसरा अध्याय जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।

0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं। पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहाँ मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़कर के मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे? यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर, सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को,